0: community की आवाज है, बस एक ही आवाज है, आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर एफएम 105.1।
1: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
2: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
3: अटेंशन फॉर लैंडलॉर्ड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द किराए पर लग जाए और आपकी प्रॉपर्टी की 100% देखभाल के साथ साथ किराया भी पर वक्त मिले? तो मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल से रब्ता कीजिए। मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज ही फोन कीजिए 01582-617-617-251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
4: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Eyes on the prize, think and learn, every fact is your concern. Fuel your brain, ignite desire, exam rooms will fuel your fire. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो वो बड़े घमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है गोया कि उसने उन्हें सुना ही नहीं, गोया कि उसके कान बहरे हैं। अच्छा, मुज्दा सुना दो उसे एक दर्दनाक अजाब का।

0: बच्चों का खाना पीना, फीस, इलाज, घर का राशन, अब कैसे मैं पूरा करूंगा, ये उसके अंदर एक खौफ पैदा होता है। तो अपनी नायाली के सबब इस खौफ में मुबतला रहता है। जब भी उसकी बीवी कोई सवाल उठाती है, उसकी तो अब मजबूरी है, तो अपनी नायाली छुपाने के लिए और गुस्से में आ जाता है, झगड़ा करने लग जाता है। अब ऐसी सिचुएशन जो है, इसमें उसको चाहिए कि अपनी नाअहली को अहलियत में तब्दील करे, मेहनत करे, कोशिश करे, ऐसी जिंदगी गुजारे कि वो बीवी को मौका ही ना दे कि वो सवाल करे कि जी घर में ये चीज़ नहीं है या बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि इस वजह से भी बाज़ औक़ात घरों के अंदर गुस्से में लोग आ जाते हैं और फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, बेशुमार तरह के फसादात आम हमारे माशरों में, मिडिल क्लास में हम देखते हैं। और फिर एक गुस्से का जो सबब है वो है खुद साख्ता तसव्वुरात, मसलन खानदान, कबीला, रंग, नस्ल की वजह से बिला वजह की एक बड़ाई का बंदा शिकार हो जाता है इस गलतफहमी में। खुद अपने आप को बड़ा अफजल समझता है, मैं बहुत बड़ा बंदा हूं, मैं फलां खानदान का हूं। अब कोई बंदा जो उस खानदान का नहीं है, किसी की मामूली बदसलूकी पर अपनी पहचान जताकर गुस्सा करना शुरू कर देता है। गुस्से के हवाले से सबसे पहले ये उसूल समझना जरूरी है कि गुस्सा इंसानी ख्वाहिशात और जज्बात का एक जुज है, लिहाजा गुस्से के इलाज के हवाले से जो भी इलाज जिक्र किया जाएगा वो गुस्सा को काबू करने के तरीके होंगे, ना कि ख़त्म करने के। ये इंसानी ज़िंदगी का ऐसा है, ख़त्म नहीं हो सकता, अलबत्ता उसको काबू में लाया जा सकता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है, लैस शदीद बिस्सुरात इन्नम शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, के पहलवान वो नहीं है जो एक ही वार में जो उसका मद्दे मुकाबिल हो उसको नीचे गिरा दे, बल्कि हकीकी पहलवान वो है जो ऐन गुस्से के वक्त अपने गुस्से के ऊपर काबू कर ले। जब दिल इस बात का शदीद तकाजा कर रहा हो कि मैं इसको खरी खरी सुनाऊं, थप्पड़ रसीद कर दूं, गालियां दूं, अपनी भड़ास निकाल दूं, या घर वालों पर चीख चीख कर अपनी बड़ाई जताऊं, यानी हाथ पांव जबान उनका इस्तेमाल करके मैं अपने कलेजे को ठंडा करूं, क्योंकि बाजार मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, ठीक ऐसी हालत के दौरान अपने आप पर काबू करना और मामले को नज़रअंदाज करना, सामने वाले को दरगुजर से काम लेते हुए माफ़ करना, आका अलैहि सलाम के इरशाद के मुताबिक बहुत बड़े पहलवान से भी बढ़ के ताकत वाला होने वाला इंसान है वो। गुस्से के इलाज के तौर पर कुछ तरीके वो हैं जो मुस्तकिल इलाज की एक हैसियत रखते हैं। एक ये है कि गुस्से में मुबतला शख्स अपने जो ऐब हैं उन पर हर हाल में नजर रखे। अपने ऐबों पर निगाह रखने वाला शख्स हमेशा आजी और अपनी इसलाह की फिक्र में मगन रहेगा, और उसे ये फिक्र कभी भी अपने मुखातब पर चढ़ाई करने से रोकती रहेगी इंशाअल्लाह, कि आदमी अपनी खुद एहतसाबी की तरफ जो है वो लग जाए। और फिर गुस्सा काबू करना ये एक बड़ा आम काम है अगर इंसान इसको कर ले उस वक्त, और जब आदमी गुस्से पर काबू कर ले तो यह हमेशा मुफीद रहा है, इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, और गुस्से के जो तकाजे उसके जहन में आ रहे हैं उसने वो सारे पूरे कर दिए, हाथ भी चला दिया, जबान भी चला दी, गाली गलौज भी कर दी, मारपीट भी कर ली, जुबान से जो आया गंदे मंदे अल्फाज भी निकाल दिए। ہمیشہ اس کا نقصان ہی ثابت ہوا ہے، اس کا کبھی کوئی فائدہ ثابت نہیں ہوا. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ نہ کر کے شرمندگی اٹھائی ہو، بلکہ ایسا شخص ہمیشہ اپنے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرے گا، اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ کر کے افسوس اور شرمندگی نہ اٹھائی ہو. اس کا اندازہ معاشرے میں پھیلے بہت سارے معاملات سے ہمارے ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے ہم لگا سکتے ہیں. مثلاً کاش میں اس موقع پر اپنا ہاتھ روک لیتا، بعد میں کہتے ہیں کاش میری زبان گونگی ہو جاتی، کاش اپنی زبان سے فلاں جملہ نہ کہتا، یہ الفاظ نہ کہتا. اب مولانا صاحب سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، جی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، میرے تو بچے ہیں، میرا تو یہ ہو گیا ہے، میرا تو خاندان برباد ہو گیا ہے، کاش میں نے اس وقت زبان کو روک لیا ہوتا. یہاں تک کہ لین دین کے تعلقات، رشتے، برادریاں، خاندان اس غصے کی عارضی کیفیت کی نظر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد بعض اوقات زندگی بھر کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کیونکہ تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو زبان کے زخم ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کو تم نے کچھ کہہ دیا، ہو سکتا ہے لائف ٹائم جب آپ سامنے آئے تو اس کو یاد آئے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح جو تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس میں غصے کا ایک بڑا حصہ ہے. مرد حضرات غصے کی جو عین حالت میں معمولی تو میں کو طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ طلاق دے دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو غصے میں ایسا کیا ہے، ہمیں بڑی شرمندگی ہے، کوئی طریقہ بتا دیں تاکہ ہم اپنی شریک حیات کو دوبارہ لا سکیں. لیکن وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا. اب ادھر ادھر سے الٹا سیدھا فتویٰ مل گیا، بس اس پہ عمل کر کے کوئی نہ کوئی ساری زندگی بعض اوقات گناہ میں گزارتے رہتے ہیں. تو یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ غصہ ہوتی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں، نیکی کرنے والے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی سامنے والے کسی پہلوان کو بچھاڑ دے، تم میں سے بہادر وہ ہے جو غصہ آئے تو غصے کو نظر انداز کر کے پی جائے. ہماری دین کی تعلیمات یہ ہیں، اگرچہ یہ ہمارا ایک جبلی، ایک فطری، ایک نیچرل ہمارے جذبات کا حصہ ہے، لیکن اللہ نے آزمائش بھی تو یہی رکھی ہے نا. اسی طرح اور بڑی ساری خواہشیں رکھی ہیں، ان کو ہم غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں، صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جس طرح باقی خواہشات ان کے غلط صحیح استعمال کرنے میں، صحیح استعمال کریں ثواب کا کام ہے، غلط استعمال کریں انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح اس جذبے کو بھی آپ جب غصے کو پی جائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا. ایک عام علاج یہ ہے کہ غصہ جس جگہ آ رہا ہو فوراً وہاں سے دور ہٹ جائیں، تاکہ وہ آدمی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کا اصل سبب انسان کے جسم میں موجود ایک ہیٹ ہوتی ہے، حرارت کے مادے ہوتے ہیں، اور حرارت کا سبب وہی حرکت ہوتی ہے. جتنی حرکت ہوگی، یعنی جتنا زیادہ بولے گا، جواب دے گا، جتنا ہاتھ اٹھائے گا، جتنا اس پر سوچتا رہے گا، انتقام کے جذبے کے سبب حرکت بڑھتی رہے گی. اور جیسے ہی وہ اپنی جگہ بدل کر سکون میں آئے گا اور ایسی حرکات سے پرہیز کرے گا تو حرارت کم ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں غصہ کے جذبات بھی کم ہوں گے، جس کے لیے علماء نے مختلف کتابوں کے اندر مختصر سے جو علاج ہیں وہ تجویز کیے ہیں. مثلا تکرار سے بچنا چاہیے. یہ جو تو میں ہوتی ہے نا، ایک نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسری کی، اگر میاں بیوی ہیں، اگر خامن نے کر دی بیوی خاموش ہو جائے، برداشت کر لے، اگر بیوی نے کر لی خامن چپ ہو جائے تو بات وہیں ختم ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ تکرار بڑھتا چلا جاتا ہے تو آج تو ایک حرف سے زائد نہیں یہ ماجرا، بڑھتے بڑھتے ایک دن یہ داستان ہو جائے گی. پھر وہ باتیں بڑھتے بڑھتے ایک پوری داستان بن جائے گی. اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ جواب دیا تھا، اس نے اس کی ماں کا نام لیا، اس نے ساتھ باپ کا بھی لیا، اس نے بہن بھائیوں کا بھی لیا، اس نے فلاں کا بھی لیا، करते करते करते करते बात वहां पहुंचती है एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक बाज़ औक़ात पहुंच जाती है। तो इसलिए क्या है, तकरार से बचना चाहिए। फिर जवाबुल जवाब से परहेज करना चाहिए, यानी एक ने एक बात की, दूसरे ने जवाब दिया, अब उसने कहा अच्छा उसने मुझे ये पूछा है, मैं भी जवाब दूंगा, फिर वो भी जवाब देगा। ये जवाबुल जवाब जो होता है ना, इससे भी परहेज के मामले को कूल डाउन करो। और एक बात ये कि इस मौके पर जो कमरा, घर, दफ्तर या जिस जगह भी कोई ऐसी बात हो रही, उससे बंदा दूर चला जाए कि जिससे तकरार हो रही है उससे नजर ही ओझल हो जाए। घर में अगर हो रही है तो गुस्से के साथ बाहर निकल जाओ, गाड़ी में बैठो कि और चले जाओ, बाहर जाके बैठ जाओ। अब क्या होगा, जब नज़र से ओझल होंगे तो वो गुस्सा भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा। या गुफ्तगू का जो मौजू चल रहा था जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे, वो गुफ्तगू का मौजू ही बदल दो। बातें करते करते जब पता है कि अब जिस तरफ हमारी गुफ्तगू जा रही है, अगर दो चार स्टेप और आगे गई तो हमारे दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़े का या गुस्से का ख़तरा है, तो मौजू ही बदल दो फौरन, हिकमत के साथ, दानाई के साथ किसी और मौजू पर बात शुरू कर दो। फिर एक बात, ये सूफिया कराम का बताया हुआ तरीका है, वजू करने चले जाओ, फौरन कहो मैंने वजू करना है। आप वजू करें ठंडे पानी से, इंशाल्लाह वो गर्मी काफ़ी ख़त्म होगी। या फौरन पानी का एक गिलास पी लें, इससे भी वो जो अंदर की गर्मी है ना, आदमी को गुस्सा आया होता है, फ़र्क पड़ जाता है। अगर फौरन इसीलिए जब कोई ऐसा मामला होता है कहते हैं पानी दो पानी दो, यानी वो पानी का एक गिलास पियेंगे उससे भी फ़र्क पड़ेगा। या तअव्वुज़ पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे, अल्लाह अपनी पनाह अता फरमाएगा। यानी ये बच बचाओ के वो तरीके हैं कि गुस्से की हालत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले तो अल्लाह ताला बचाए। ये जितनी भी मुख्तलिफ कुतुब के अंदर जो कुछ हमने बुजुर्गों से सीखा पढ़ा, ये सारी तजावीज़ जिसम में मौजूद उस हीट को मजीद हरकत देने से रोकने में मददगार और मुआविन साबित होगी। गुस्सा आ जाए उसको कोशिश करें नेगलेक्ट करने की, नज़रअंदाज करने की। इस मौके पर कोई भी छोटा बड़ा फैसला करने से गुरेज करें, इसलिए कि अगर जज भी हो ना कुर्सी की अदालत में बैठा हुआ, सख्त गुस्से में, अगर उसने फैसला दे दिया है और ये बात साबित होगी कि जब उसने फैसला दिया है तो सख्त गुस्से में था, तो गुस्से का फैसला उसका भी काबिले कबूल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उस वक़्त इंसान सही तरीके से फैसला नहीं कर सकता जब आदमी सख्त गुस्से में हो। इसलिए कोई फैसला उस वक़्त ना करें कि मैं इस वक्त ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, ठंडे हो जाए, बाद में जिस वक़्त मामलात नॉर्मल हो जाएंगे फिर कोई फैसला करें। फिर गुस्से को इंसान अपने ऊपर ना हावी होने दे कि बंदा उसका गुलाम बन जाए, फिर वो बेकाबू हो जाए, नहीं, गुस्से को अपने कंट्रोल में रखें। इसकी मिसाल कुछ तजर्बेकार बुजुर्गों ने यूं बयान की है, जैसे ख्वाब में कोई मुझे, यानी एक शख्स है, ख्वाब में वो गोली मार दे और मैं बेबस होकर तकलीफ में मुबतला हो जाऊं, तो इस मौका पर उस तकलीफ से बचने का सबब आसान तरीका यही है कि बेदार हो जाए, जिसके बाद उसकी सब तकलीफ खत्म हो जाएगी। कि अब आदमी ने ख्वाब देखा, किसी ने गोली मार दी, बंदा वहां तड़पने लग गया, अब वहां तड़पता ही रहेगा ना, उससे निकलने का तरीका क्या है, आंख खुल जाए, बस खत्म हो गया। जब देखेगा मैं ठीक ठाक हूं तो वो जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। अदरवाइज अगर ख्वाब दो चार पाँच मिनट और भी लंबा रहा तो वो क्या होगा, वो इसी तरीके से परेशान ही रहेगा। तो इसी तरह यह है कि जैसे ख्वाब के अंदर कोई ऐसी कैफियत होती है तो उससे निकलने का तरीका यही होता है कि बेदार हो जाए, इसी तरह गुस्से की हालत से निकलने का तरीका यही है, जिस तरह अर्ज किया है कि साइड पर चला जाए, कि आगे पीछे हो जाए, पानी पी ले, वजू कर ले। अब इससे क्या होगा कि वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह एक और आम बात जो है कि गुस्से का दौरानिया कहते हैं कि 10 मिनट तक होता है, जो माहरीन नफ्सियात हैं वो कहते हैं तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना आदमी को जब टेंपर हाई हो जाए, गुस्सा आ जाए, 10 मिनट का ये दौरानिया होता है। लिहाजा किसी भी तरह ये 10 मिनट जो है इनको बहला फुसला कर गलत फैसले से बचा ले, तो अगले तरीन दौरानिए का फायदा इसमें उसको महसूस होगा। लेकिन ये जो 10 मिनट है, ये गुस्सा आया तो 10 मिनट में माहरीन नफ्सियात कहते हैं कि आदमी का टेम्परामेंट बहुत हाई हो जाता है, उस वक़्त वो काबू कर ले, कोई फैसला ना करे, खा वो तलाक का फैसला हो, किसी को और कोई हाथ उठाने का फैसला हो किसी पर, या कोई और गाली गलौज का फैसला हो, कोई भी गलत फैसला करने से पहले बच जाए, तो बाद में जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। फिर एक और बात है कि जब रमज़ान का महीना होता है तो रोज़े की हालत में भी बाद लोगों को गुस्सा आता है। रोज़े की हालत में गुस्सा के इम्कानात कुछ बढ़ तो ज़रूर जाते हैं कि पूरा दिन भूख प्यास और ख्वाहिशात से बंदा दूर रहता है, इसलिए तबीयत में एक तरह की तेज़ी सी आ जाती है। तो ये महीना सब्र का महीना है, तो इस महीने के अंदर भी इंसान जो है वो अपने गुस्से को काबू में रखे। एक रवायत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि हदीस मुबारका में रोज़े को ढाल से तशबीह दी गई, फरमाया अस्सियाम जुन्नत, कि रोज़ा जो है वो एक ढाल है। वाइज़ा कान यौम सौम अहदकुम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम में से किसी का रोज़े की हालत में हो तो उसको चाहिए कि कोई बदअमली नाफरमानी गुनाह और अजाब के कामों से अपने आप को बचाए। तो बार क्या कोई भी हालत हो उसमें गुस्से से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक दे।
1: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम। इंस्पायर एफएम। इंस्पायर 105.1 एफएम।
2: The messenger of God, peace be upon him, said, By him who has my soul in his hands, were you not to sin, God would have removed you and brought another people who would sin. Then ask for God's forgiveness, and God would forgive them.
3: Narrated by Abu Huraira in the collections of Muslim.
4: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
5: Trust yourself to know what's true, to find your way in the darkness. Let the word inspire you, don't live your life in blindness. All this created not by chance, but a solemn testimony. Find the importance of this life, and upon the path stay steady. Trust yourself to know what's true, don't follow the absurd. Let the truth inspire you, for ignorance can be cured.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazib and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Listen, if exam stress is making your head spin, take a breath. It's completely normal to feel anxious or scared right now. You aren't alone and a grade doesn't define who you are. Thank you for listening to Inspire FM Jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: A Around the world, millions face the ravages of conflict and natural disasters, leaving countless unable to observe their fast. But with your support, last year, we fed over 60,000 people across 14 countries. This year, the need is even greater, and your generosity can light up the world once more. Join UKIM to feed the fasting Ummah. Donate now. Be the change. Share your blessings. Feed the fasting.
9: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: लेकिन इंसान ये नहीं सोचता ना सरहदें रह जाएंगी जब वो लौट के जाना है उसको, तो ना ये माल मता ना ये सब कुछ, जो एनर्जी वो परसीव करेगा या गेन करेगा जिसको हम कहते हैं नेकी, वो बस जानी है साथ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये देखती हूँ कि हवस सारी ये चीजें, छीना झपटी मार धार, एक दूसरे के हसद बुगज, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सारी चीजें छोड़ता नहीं है और आज भी हम उन्हीं मसाइल का शिकार हैं जो सदियों से थे
1: जी।
0: तो ऐसी क्या चीज कोई मौजूदा हो जो नबी और अल्लाह ताला का हम कहेंगे पैगाम भी नहीं कर सका
1: जी। बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये आपने तीन चार चीज़ें जो सीक्वेंस में बताई हैं ना, मैंने साथ साथ लिख दी हैं। मैं इसको थोड़ा सा रीफ्रेज भी कर दूंगा ताकि आसानी हो जाए क्वेश्चन बनाने में, और साथ इसके बारे में कुछ बात भी करते हैं। कोई है हमारे साथ रेडियो आज़ादी रौंदे? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल बिजीनेस ख़त्म हुई आपकी?
2: Oh, I'm always busy, honestly.
1: इसीलिए आपके लिए फिर हम योर हाइनेस की जगह योर बिजीनेस कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: फरमाइए।
2: Always busy. So,
1: पिछला शो सुना आपने?
2: I'm sorry.
1: पिछला शो सुन पाई आप?
2: मैंने सुना, पिछला भी सुना, वो वॉर पे भी सुना। एक्चुअली वॉर वाला, इट वाज सो अमेजिंग बिकॉज आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड फॉर इयर्स एंड व्हेन आई लिसन टू इट एंड आई लिसन टू इट ट्वाइस because I always used to think, why people fight? Why these countries fight? Why can't they just rest, stay in peace, you know?
1: Especially why Pakistan and India? ये आपस में इनका क्या चक्कर चल रहा है इतने सालों से? ये इसकी कोई ऊंट करवट किसी करवट नहीं बैठता, तो बहुत सारे reasons अभी समझ आए हैं आपको?
2: Yeah, exactly.
1: कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप कभी सोचती थी कि आज़ाद साहब जब शो करेंगे, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और कॉल्स कर रहे थे, क्योंकि वो मेरा एक पाकिस्तानी होना, एक मुसलमान होना, एक मेरा फ़ौजी होना और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में, क्योंकि वो इन चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज करते रहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं यार ये बंदा कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी चीज़ करेगा या हमें बताएगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये बायस्ड आदमी है। उनकी ये हसरत बेचारों की, जिनको अकल और समझ है उनकी ये हसरत ही रह जानी है। लेकिन आपको जो लगता था कि इस चीज़ पे जब हम बात करेंगे तो ऐसा कुछ निकलेगा?
2: Right, the thing is, no, there was no bias there. It just looks like it's all, you know, I mean, मुझे तो honestly मुझे politics समझ में नहीं आती। I'm totally, you know, away from those things. You know,
1: so politics जो है ना, politics जो है, ये आर्ट है एक रेजोल्यूशन का किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। असल में अगर आपको वर्ल्ड की ना, अगर आपको थोड़ा सा सोचने और समझने लगेंगे कि तो अगर आपको घर की पॉलिटिक्स नहीं समझ आ रही ना, रिश्ते की पॉलिटिक्स नहीं समझ आ रही, तो आप कभी भी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, रब जो है वो इंसान से इस बात का तकाजा करता है, उसकी ये डिमांड है कि वो अपने दिमाग को खोले, चीज़ों को समझे, चीज़ों को सब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करें। पहले वो सेल्फिश होता है, शुरू में नहीं होता वो सेल्फिश। आप देखें बचपन में हम चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर लिया करते थे, बच्चे टॉफियाँ ये सारी चीज़ें वगैरह, कभी कभी पक्के हो जाते थे किसी चीज़ के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो दुनिया की देखा देखी में हर बंदा अपनी चीज़ को पकड़ लेता है, अपने पैसों को वो बढ़ाता रहता है, चीज़ें करता जाता है। लेकिन अगर आप इंसान को नहीं समझेंगे ना, उसकी तरफ से आने वाली कर्व बॉल जो आपका जहन आपके ऊपर फेंकता रहता है, और आपके करीब तरीन रिश्तेदार जिन्होंने आपको पैदा किया उनसे लेकर बाकी के इर्द गिर्द जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, और दोस्त आपके और आपके करीब तरीन लोग, वो एक रिफाइंड सी एक जेलसी में लोग पड़ जाएंगे और उन्हें कभी पता नहीं होगा, वो एक कुछ लफ्ज़ होंगे, कुछ एक आंख का देखना होगा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिससे आपको सब एक सेकंड के लिए समझ आती है, लेकिन उसके बाद आप उसको अनदेखा करते हैं। यही वो अनदेखापन है जिसकी वजह से आप बड़े बड़े धोखे, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें और बड़ी बड़ी परेशानियाँ उठाते हैं। हालाँकि पहला साइन, पहला सिग्नल, ये सब कुछ आपका इंसान होने के रिफाइन इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से आपको पता चल जाता
2: है। एज के साथ भी आई थिंक द मोर यू गेट एक्सपीरियंस देन यू लर्न मोर।
1: हाँ जी, ये एक अच्छा बहाना है, सही कह रही हैं आप। हम अक्सर अपने आप को ये कहते हैं, लेकिन वो गालिब ने कहा था ना, हर दाढ़ी वाला बुजुर्ग नहीं होता। मैंने एज के साथ साथ लोगों को सिर्फ बर्बाद होते देखा है, मैंने लोगों को रिजिड होते देखा। जिन लोगों को मैं 20s में जानता था ना, वो बड़े फन, एक्साइटिंग, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होने वाले लोग थे। वही लोग जब उनको मैं 35-40-15-20 साल के बाद मिला, वो इतने रिजिड हैं बिना जाने, वो रिलीजन के बारे में इतना रिजिड है बिना जाने, वो अपनी चॉइसेस इन लाइफ के बारे में इतना रिजिड है बिना जाने।

0: वो जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं वो उनके साथ इतने रिजिड हैं और वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो इतने टाइट हैं कि वो कुछ नहीं दे सकते, ना कुछ ले पा रहे हैं, जो उनको चाहिए वो भी नहीं ले पा रहे। तो ये एज के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन सीधी नहीं होगी, एज आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को, लेकिन एक्सपीरियंस को अगर आप इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप नॉलेज लिए चले जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उम्र के साथ साथ आपको आती चली जा रही है, और तकलीफ दे बात यह है कि एक सर्टन स्पेसिफिक जॉब में होने की वजह से जो लोग नॉलेज गेन करते हैं वो समझते हैं हम नॉलेजेबल हो गए। वो एक डॉक्टर है बेचारा, मरीज ही देखता रहता है 20 साल, वो समझता है मैं नॉलेजेबल हो गया हूँ, हालांकि उसने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर आवर्स जो हैं वो डॉक्टरी में लगाए हैं, तो वो डॉक्टरी में नॉलेजेबल हो गया है। उसमें अभी वो देख के बता सकता है पेशेंट को, चीज़ों को, बहुत सारी बातें बिना किताब को देखे, बिना कंप्यूटर खोले, बिना चीज़ें किए वो बता सकता है। एक्सपीरियंस एक सर्टन तरीके का हो गया, लेकिन वो अपने आप को नहीं जान पाया, वो अपने रिश्तों को नहीं जान पाया, अपने क्रिएटर को नहीं जान पाया, वो अपने मकसद को नहीं जान पाया। इसीलिए ये तमाम ज़्यादातर लोग जब आती है ना, बेंटली की चाबी रखते हैं ऐसे, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनको सूरत पुरत मारी जाती है जब वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मैं खोल के कहता हूँ सर ये ऐसे ऐसे है, या मैडम ऐसे है, या भाभी जी ये बात ऐसे है, तो वो कहते हैं ये तो फिर सारी ज़िंदगी ख़राब होगी, मुझे कभी समझ नहीं आई, ये तो बहुत सामने थी बात। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ हमारी प्रायोरिटी नहीं। हाँ एक बात है, अगर मैं आपको पैसे दूँ ना, कि आज से मैं आपको पैसे दूंगा, 9 to 5 में आप कमाते हैं $1.5 लाख, मैं आपको दूंगा $3 लाख, सोने के 8 घंटों को छोड़ के बाकी के जो 16 आवर्स हैं ये आप मुझे दे दें, और ये आप सोच कर करेंगे तो मैं आपके पैसे कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, रिजल्ट दोगे कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, रिश्ते अगर अच्छे नहीं तुम्हारे चल रहे मैं तुम्हें पैसे दूंगा रिश्ते रखने की, आप यकीन करें ऐसे परफेक्ट रिश्ते बनाएंगे लोग। ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, ये सारा कुछ घूम फिर कर, ये जंगें, ये घर की जंगें, पावर, पावर से पैसे का ताल्लुक है, पावर से बाकी चीज़ों का ताल्लुक है। मैं अगर खोल के रखूँ ना, मैं पूरे इंडिया की हिस्ट्री आपके सामने खोल दूंगा, मैं इस वक्त मोदी जी जो फरमा रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं और आगे क्या होने वाला है ये भी मैं खोल के रख दूंगा, और आज 20 साल के बाद जब ये कोई बंदा सुन रहा होगा वो कहेगा बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पहले में मैंने जो 20 साल पहले बताया था वो भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि नेचर नहीं बदल रही है। नेचर इंसान की नेचर, जब आप के पास कुछ नहीं होता, जब आप बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर आते हैं, तो वो जो आपके कॉम्प्लेक्सेस, वो इनसिक्योरिटीज़, वो सारी चीज़ें एक बंदे की ज़ात से होते हुए पूरी नेशन में ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं, और अगर उसकी सज़ाएं भुगतनी है तो वो बंदा नहीं भुगतता, पूरी नेशन भुगतती है, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो। बॉर्डर शॉर्डर तो बहुत बाद में, बॉर्डर तो ये 100-200 साल पहले बने हैं सारे, इससे पहले तो बॉर्डर्स नहीं हुआ करते थे। इब्ने बतूता याद है आपको, बगल में जूता लेके दुनिया में जहाँ मर्जी चला जाता था, अब हमको नहीं जाने दे रहे, अब हमें हर जगह के वीज़े और ये मसले और वो मसले कर रहे हैं। 200 साल पहले ये कुछ भी नहीं था, 200-300 साल पहले तो इतनी आबादी भी नहीं थी, उन्होंने आबादी को जिस तरह और ये बाकी चीज़ें की हैं, इस वक्त दुनिया की आबादी एक्चुअली नंबर्स में 3 बिलियन के नीचे होनी चाहिए थी, तो 3 बिलियन होती तो ना हाइब्रिडाइज्ड वीट मिल रही होती है आपको, ना आपको इंसेक्टिसाइड्स पैसे ऑर्गेनिक खा रहे होते, नेचुरल चीज़ें कर रहे होते, सब कुछ हो रहा होता, लेकिन बाकी के 5 बिलियन मुँह ना होते, उनकी ख्वाहिशात ना होती, उनकी चीज़ें ना होती, इतने अरब खरब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ना होते। सो ये सारे का सारा सब पैसे के लिए हो रहा है, जिसका हमारी ज़िंदगी में एक्चुअल में इतना लेना देना नहीं था। वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ज़िंदगी के लिए, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, उसके लिए 7-8 घंटे का काम करना इज मोर देन इनफ, बाकी ज़िंदगी रिश्ते अकल समझ और ये सारे काम करने थे जो हमने नहीं किया, तो उसकी सज़ाएँ, घर में भी जंग है। पहली सज़ा पता क्या होता है, ना इल्म होने की या बेइल्म होने की, अपने अंदर की जंग, अपने अंदर से जंग शुरू। आपने खुद महसूस किया इंसान अपने अंदर कितनी जंग है, वहाँ से आदमी हारना शुरू करता है। तो जो आदमी अंदर की जंग हारता है वो बाहर की जंगें जीतने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं जीत सकता। अंदर की जंग रिश्तों में आती है, ख़ानदान में आती है, ख़ानदान से वो सड़क पर आती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जाती है, जो बचपन में हुआ हुआ है वही आम बेचारे सारी ज़िंदगी वही झीलते रहते हैं, और वही का सब आगे जाकर स्टेट्स के अंदर भी वही जंग दुनिया में आपको नज़र आती है। और अभी थोड़ी देर पहले जो शहनाज जी का क्वेश्चन था कि कितने पैगंबर आए, 1,24,000 बताए गए आपको, और उसमें से आपको 28 के नाम आते हैं, बाकियों को हम मानने की मान ही नहीं रहे, ना राम को मान रहे हैं लोग, ना सिद्धार्थ को मान रहे हैं, वो किसी को पैगंबर मानते नहीं, सिर्फ ये कहते हैं 1,24,000 आए थे तो उसमें से 28 बताए गए, 25 से 28 के नाम हैं, बाकी कहाँ हैं। जिस जिसको हिस्ट्री बता भी रही है लोग उनको नहीं मान रहे, सिर्फ कहते हैं कहाँ हैं? रिजल्ट्स भी सामने आ गए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी आ गई, बस नहीं मानना, क्योंकि दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। हर चीज़ जो हमारी है बस वही हमने दुनिया को बतानी है, बजाय इसके कि उनसे भी देखना है, समझना है, साथ मिलकर चलना है। तो ये वो बातें जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ नहीं रही हैं। और ये बातें सोचने से समझने से आदमी थक नहीं जाता। आदमी जितना इल्म होगा ना, असल में चीज़ दो चीज़ें हैं, जहालत की ज़िंदगी जी लें वो बेइंतहा अज़ाब है, दूसरी तरफ जानना हमेशा ना जानने से बेहतर होता है। वो कहते हैं ना, ईविल यू नो इज़ बेटर देन द ईविल यू डोंट। तो एटलीस्ट यू कैन डिसाइड कि विच वन टू चूज़। और ये कोई इतना लंबा काम नहीं है कि इतना स्ट्रेस ले लें हम, मर जाना है हमको। जिस दिन आपको ये एहसास हो गया ना, जो मुझे हुआ था कि आखिर मुझे मर जाना है, तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई थी। अगर मर ही जाना है फिर हराम क्यों खाना है, फिर गलत काम क्यों करने हैं, किसी पर जुल्म क्यों करना है, किसी की औलाद को क्यों बर्बाद करना है, अपनी को क्यों बर्बाद करना है, अपने जहन को क्यों बर्बाद करना है, रिश्तों को क्यों बर्बाद करना है, बाकी मज़ाहिब और अपनी अंडरस्टैंडिंग को। अगर जीनियस बनना है तो जीनियस का रास्ता है, ईवल जीनियस बन के क्यों बर्बाद करना है, चॉइसेस होती हैं आपके पास। तो ये सारी बातें जब आप इस तरह सोचते हैं तो इसमें कोई इतना मेरे जैसा आम हैंडीकैप्ड ब्रेन का आदमी जो कि बेसिक फंक्शनल नहीं था और सेन रहना उसका मुश्किल हो रहा था, तो उसने अगर चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में लेके यहाँ तक ज़िंदगी में आ गया है। इसीलिए तो मैं लोगों की इस बात पे यकीन नहीं करता जब वो कहते हैं कि जी मेरा कुछ नहीं बन सकता या मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं कोर में जाकर उनको खोल के देखता हूँ तो ये सारे लोग मुझसे बेहतर लगते हैं मुझको। तो अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो इनमें से कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन अपने अंदर के उस पावर को वो अनलॉक ही नहीं करना चाहते। ये ताला अंदर से खुलता है, वो उसको खोलना ही नहीं चाहते। तो एक हद के बाद हम क्या कर सकते, बोर तो नहीं कर रहे हम आपको?
1: नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एक्चुअली दैट्स नॉट, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर शोज, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई एम एबल टू रीऑर्गेनाइज माय लाइफ इन लास्ट फ्यू इयर्स। ऑनेस्टली आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई एम टोटली एट पीस फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। ऑनेस्टली आई हैव द एनवायरनमेंट व्हिच आई वांटेड टू हैव इन माय लाइफ, ऑनेस्टली। So I have learned so much, and every day when I listen to your show, and you know.
0: But you are actually creating your life, ठीक है? ये जो आपने कहा, जब तक जो दो किस्म की चीजें मिली हुई हैं, controllable factors और uncontrollable factors. Uncontrollable कभी भी आपके control में नहीं आएंगे। आपने कहाँ पैदा होना था, आपका रंग नस्ल क्या है, आपका कद कितना होना है, इस किस्म की और कुछ चीज़ें हैं बेसिक्स, और उसके बाद मरना कब है आपने, आपको एक गिफ्ट मिला हुआ, आपका उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो माँ के पेट में डिसाइड हो जाता है फर्स्ट ना लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। वो मैं किसी दिन वहाँ की जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का और जो साइंस बताती है वहाँ से आपको कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, तीसरा शो भी हमारा रहता है जो कि मुझसे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो नहीं पूछ पाते लोग, बट दे नीड टू नो दीज थिंग्स कि क्यों हम बार बार एक ही गलती करते हैं, क्यों समझाने के बाद, हज़ार दफ़ा समझाने के बाद भी हम वही चीज़ें कर रहे होते हैं। ब्रेन कैसे बनता है, न्यूरोसाइंस क्या है, हम कहाँ से चैलेंज्ड हैं और उन चैलेंजेस का क्या हल है, और टफ लव का असल जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक जो बातें दो शोज हुई हैं उसमें अभी हमने वो बात नहीं की है। जब आप उनको अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, बच्चों पे, बड़ों पे, दुनिया की किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आपको वो सारे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपको टफ लव अपने आप से, इस दुनिया से, और रब का ये सब नज़र आएगा, क्योंकि रब का हमारे साथ जो लव है वो बेइंतहा लव होने के साथ साथ टफ लव उसके अंदर इनबिल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और वो क्यों है, उसकी एक रीज़न है जो हमारे रिश्ते में भी होनी चाहिए, जो इंसानों के साथ भी होनी चाहिए। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आएंगी। रिसेंटली कोई चीज़, आजकल कोई चीज़ बॉदर कर रही है, ये जंग वंग से जो मामला चल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं लोगों से आर पार के?
1: Honestly, I don't listen to the news much. I don't have much time. But right. Yes, when you just go on the internet, you some things pop out, then I listen to the news.
0: क्या लग रहा है आपको? आपको मीडिया में क्या लग रहा है? क्या कभी इंडिया मीडिया, इंडिया का जो मीडिया है अगर आप सुनती हैं, तो क्या लग रहा है आपको?
1: You know, I don't listen to the much news, of course.
0: थोड़ा बहुत सुनती
1: हैं. Because it makes me, you know, when I see all this. I don't know. I just become sad because when I see innocent lives, you know, being lost, people, you know, and it's all the time that innocent people are the ones who suffer.
0: Oh, इसीलिए वो ही तो इसीलिए तो पैदा हुए हैं ना, वो इन्हीं experimentation की नजर हुए हैं, और हम सब लोग उस experimentation की नजर हुए हैं। हम तमाम लोग जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के साथ, और जो पिछली पीढ़ी है, जो उससे पिछली पीढ़ी है, जिन्होंने एक दूसरे के साथ ये ना जानने की वजह से होता है। जब आप रिलीजन को नहीं जानते, जब आप रब को नहीं जानते, तो फिर उसकी ये सज़ाएं हैं। आपको पता है जो लोग एक दूसरे के साथ 1947 में और उससे पहले साथ रहते थे, दिवाली मनाते थे, ईदें मनाते थे, सब कुछ करते थे, जब वो पार्टीशन हुआ, इन्होंने एक दूसरे को उन्हीं महल्लों में, उन्हीं गलियों में जिन बच्चियों के साथ बड़े हुए थे, जिन बच्चों के साथ बड़े हुए थे, जिनके साथ सब कुछ हुए थे, वहाँ पर इतने बड़े बड़े जुल्म दोनों तरफ से किए गए और ऐसे ऐसे कत्ल हुए कि तकरीबन 10 लाख लोग मारे हमने एक दूसरे के। सिर्फ ये तब होता है जब आपको पता ही नहीं होता, जब फ्यूल कोई और करता है, मकसद किसी और का कुछ और होता है, और हम तमाम लोग सिर्फ बेसिक ह्यूमन होने के जज्बात में हम फंस जाते हैं। और बहुत कम लोग उस वक्त होते हैं जो एक दूसरे के रेस्क्यू के लिए आते हैं, जिनको चीज़ें याद रहती हैं, वरना वो कहते हैं हमारी बहन मारेगी ये तो दूसरे के भी मारेंगे, या हमारे साथ ज्यादती हुए तो दूसरे के साथ भी करेंगे। ये बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में रह जाते हैं, और ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमें इल्म नहीं है। हमें, अगर हम हिंदू हैं तो हमें नहीं पता कि हिंदू क्या होता है, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें नहीं पता असल मुस्लिम क्या होता है, अगर हम किसी भी रिलीजन से हैं और भगवान को, रब को, लॉर्ड को मानते हैं, तो असल में क्या करना चाहिए, इंसानी जान की क्या कीमत। वो कीमत जिसकी वजह से वो इंसान ख़ुद अपनी जान नहीं ले सकता, वो उसके लिए इतनी सख्त सजाएं, क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा बिखेड़ा पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स बना के रख दी गई है। आप इस डिजर्शन इज़ नॉट एन ऑप्शन, किलिंग समवन एंड गेटिंग यू नो किलिंग योरसेल्फ इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। ये इतना सेक्रेड काम है इंसान जो है, और हमने उसके साथ क्या कर रहे हैं,
1: कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की।
0: जब, और दूसरा, जब अरबों पैदा हो जाएंगे ना, दोनों मुल्कों में कम से कम 2 बिलियन होने वाले हैं, सो 2 बिलियन में कितने दिमाग इस्तेमाल कर रहे होंगे, कितने लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं। अगर आप स्लम्स में जाके इंडिया में, पाकिस्तान में, बाकी जगहों पे देखें उन लोगों को, उनको सिर्फ नंबर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनकी कभी वैल्यू थी ना कभी होगी आगे जाकर। और ये कि मुल्क वालों को या ऊपर वालों को एहसास है ये बहुत फ़नी बातें करते हैं हम कभी कभी कि उनकी वजह से ऐसे हो रहा है, या ये अटैक इसलिए हुआ है कि कुछ बंदे मर गए, या ये अटैक इसलिए हुआ है कि फ़लाँ बंदे मर गए। बंदे तो रोज़ मरते हैं, हम खुद मारते हैं अपने बंदे रोज़, तो बाहर से मर गए और फलां मर गए, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, सब हमको यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो बहुत अभी बहुत इन्फेंसी में है। मतलब अगर हज़ार लाखों, ये कहते हैं जी क़यामत आ जाएगी, उससे पहले इंसान ने रिफ़ाइन होना है, तो फिर तो मतलब 10,000 साल की आपको रिकॉर्डेड हिस्ट्री नज़र आती है। अभी तो बहुत कुछ रहता है। अभी तो मैं ना, एक दफ़ा कॉलेज के ज़माने की बात है, वहाँ पर एक टेक्सला एक जगह है पाकिस्तान, तो वहाँ पर उधर पुराने हड़प्पा के ज़माने के बहुत पुराने पुराने जो रूवंस हैं वहाँ मिलते हैं। तो हर ज़माने में इंसान को ये लगता था, इससे बहुत पहले भी, जब अहराम मिस्र आप देखते हैं तो इतने बड़े बड़े पत्थर किन मशीनों से उठाए गए, कैसे वहाँ पहुँचाए गए, तो हर ज़माने में बड़ा बड़ा कुछ होता रहा है, और कमाल किस्म की कौमें आई, उनके पास ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी थी। तो वहाँ पे आप, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे लिक्विड्स और ऐसी चीज़ें ईजाद हो गई हैं जो कि बता सकती हैं कि कौन सा पत्थर, कौन सी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस ज़माने की है। तो वहाँ पर एक दीवार थी जो उन्होंने निकाली थी, तो वो दीवार बुद्ध मत के, वहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं और बुद्ध जो थे वो बिफोर क्राइस्ट थे एक्चुअली, 400 से 500 साल, तो उनका भी था और हर ज़माने की जो चीज़ें बताई गई थी। तो 5,000 साल की कम अज़ कम एक दीवार थी जिसमें 3 different times की कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी। तो इसका मतलब है एक ही दीवार के अंदर 3 different times की कंस्ट्रक्शन हुई थी। वर्ल्ड इतनी दफ़ा टॉपल ओवर होकर ज़मीन ऊपर नीचे हो चुकी थी जलजलों से, और उसके बाद वो कुदरती, वो उन्होंने चीज़ें ऐसे बनाई थी कि उन्होंने काट काट के उसको एक छोटी सी दीवार बना दिया था, कि 5,000 साल की हिस्ट्री उसे एक दीवार में थी। और इंसानों ने ना उस ज़माने में कुछ सीखा ना इस ज़माने में कुछ सीखा। और उस ज़माने में एक वक्त पे जब बुद्ध मत बहुत हो गया रिलीजन के तौर पे, तो वो तो जानवर भी नहीं मारना चाहते, इसीलिए वेजिटेरियन भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी, तो वो हथियार भी नहीं उठाना चाहते। तो एक वक्त में उन पे जब उनको इन्वेड कर लिया गया तो उन्होंने हथियार नहीं उठाए, तो तकरीबन 60,000 बुद्ध के जो पैरोकार थे, बख्शु भी उनको कहा जाता है, और जो उसके थे, हथियार नहीं उठाए और 60,000 को सर काट दिए गए। तो ये लड़ाई करके आगे से सेल्फ डिफेंस, इसलिए इंसानों के लिए सेल्फ डिफेंस को जायज़ किया गया है, ताकि इस तरह के इंसान के अंदर, अब बहुत बड़े बड़े हैवान हैं, हैवान बेचारा तो इतना जालिम नहीं हो सकता जितने इंसान होते हैं, और ये सब चीज़ें, लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे खुद को तो अपने अंदर के जानवर को टेम नहीं कर सकेंगे। ये जो सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर एक तड़प है, थोड़ा हमें थोड़ा हमेशा बहुत भी हमें बहुत थोड़ा लगता है, और इसी सर्वाइवल में और मेरी औलाद, मेरा, मेरी माँ, मेरा बच्चा, ये जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे कभी दुनिया में आसानी, शांति, ये सब चीज़ें नहीं आती, और यही असल इम्तिहान है इंसान का। ठीक है, और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: Sahih al-Bukhari, narrated by Abu Huraira. A man came to Allah's Apostle and said, O Allah's Apostle, who is more entitled to be treated with the best companionship by me? The Prophet, peace be upon him, said, Your mother. The man said, Who is next? The Prophet, peace be upon him, said, Your mother. The man further said, Who is next? The Prophet, peace be upon him, said, Your mother. The man asked for the fourth time, Who is next? The Prophet, peace be upon him, said, Your father.
6: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Rhythm of reading, melody of notes, mindful practice, every quote. From dusk to dawn, let your knowledge bloom. Top scores await, there's plenty of room. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: Hi, this is Zakia Abdullah from Inspire, and I'm here to tell you to keep dreaming and to follow your dreams.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Naima B. Robert, author of From My Sister's Lips, editor of Sisters Magazine, for a world of inspiration. Keep listening to Inspire FM 105.1.
11: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
12: Assalamu alaikum and hello, I'm Laura Conda and I'm the host of the new podcast News and Culture Show. We're going to be talking about all the latest news from around Luton, all the amazing things that are happening in arts and culture and events across the town. You'll be able to catch up and find out what you're doing this week, where you can be going and what is happening in our town, and we really want to hear from you, so please do get in contact and let us know your thoughts every week on Inspire FM.
13: Every Wednesday at 6 p.m.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
15: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
16: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Aaj kaise yaad kiya aapne? Ye to baaton se baat nikale.
1: Aaj nahi, main to show sunti hu like whatever time I get, you know, last one hour usually because
0: call karne se pehle bhi to kuch socha hoga na, kuch to hoga dimag mein.
1: I listened to your show on war. That was the last one I listened, and I was trying to listen that show
0: kya
1: on Monday.
0: What did you learn from the war show? Se kya sikha?
1: War wale show se, I think what I understood is what you explained. I was used to think why these countries fight all the time, and you said that there's. I feel like it's too much drama, too much mass distraction, even distraction karna hota hai. Or I mean, this is not going to come to an end. Nobody wants to. This to come to an end, you know. So I'm like, there's so much. I don't know. All this is.
0: चलते हैं. साथ साथ जब जहाँ और आदमी इतना इल्म हासिल करता है ना, इल्म जो है ना उसकी कोई एंड नहीं है. और आप कभी आपको लगता है ना कि इल्म बहुत हो गया या मेरे लिए इतना काफी है. इल्म कभी काफी नहीं होता.
1: No, and I feel like I have to learn a lot.
0: कोई बात नहीं. ये तो आपको क्या सोक्रेटिस भी कहता था. जब उसको बिल्कुल एंड पे पहुंचा तो उसने कहा था आई नो दैट आई डोंट नो नथिंग. तो और जब हुजूर पाक से पूछा गया कि इंसान को इतना इल्म जब आ जाएगा, इतना वो खोज लेगा, गारों से निकल के महल बनाएगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएगा, वो ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो उसके पास कितना इल्म आ जाएगा, खुदा के इल्म में से कितना इल्म आ जाएगा. तो उन्होंने कहा जैसे समंदर में आप उंगली डालें बाहर निकालें तो उसके ऊपर जो कतरा रह जाता है बस उतना आएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा है क्योंकि खुदा खुद सरापा सर से पाँव तक इल्म है. तो जितना इल्म जो है ना और वक्त और इल्म, वो कहते हैं वक्त को बुरा मत कहो, मैं वक्त हूँ. इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ देता है, अजियत देता है जब वक्त को गाली देता है, कहते हैं वक्त बहुत बुरा आ गया है. तो वो रब ही वक्त है, रब ही इल्म है. इस और एक वक्त में बहुत कुछ है, तो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है, समझते जाना है, ख़ुद को जानते जाना है, अपनी बेसिक ज़रूरतों को समझते जाना है, जो मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ देने की कोशिश करना है, सिस्टम को ट्रिगर करना है, अपना रोना धोना बंद करके दुनिया को देखना है कि दुनिया, जब आप दुनिया की तकलीफ़ परेशानी और मसाइल देखेंगे ना, आपको अपना कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी. मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पिछले कितने ही 10-15 साल जब से मुझे इस बात की समझ आई है. मेरा एक दुख भी इस काबिल नहीं है कि जो लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और परेशानियाँ मैं उनकी देखता हूँ, जैसे उनकी नींद है, जैसे वो सुबह उठते हैं, जैसे उनके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है, जैसे वो चीज़ों की उनकी हिर्स हवस ख़त्म ही नहीं होती, जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे उन पे इतना तरस और तकलीफ़ आती है, मुझे अपना सब कुछ भूल जाता है. ना कोई दर्द याद रहता है, ना किसी का मर जाना याद रहता है, ना किसी का छोड़ जाना याद रहता है, ना किसी का तकलीफ़ धोखा कुछ भी कुछ नहीं मुझे याद रहता. बिकॉज दुनिया में इर्द गिर्द इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी और इतने मसाइल हैं कि आप हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहते हैं. हर रोज एक जन्नत का दिन है, एक मौका है, एक चांस है.
1: आई एग्री, यू नो, एक्चुअली दैट्स व्हाट आई फील लाइक, यू नो, व्हेन आई थिंक ऑल सी अराउंड एज यू सेड, आई फील लाइक इवन इफ infinite times I say alhamdulillah, that is less. Mm-hmm. Because we are so blessed. I mean, we are so blessed if you see, you know, the what God has given to you, Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. I mean, we cannot say, we cannot complain about anything, honestly.
0: And in America, we are living where we are, if we are doing our food right, we are doing it less, okay? پیسٹیسائز انسیکٹیسائز اربیسائز اور یہ جی ایم اوز اور یہ سب نکال لیں تو اس کی دیوار کے ساتھ جنت ہے, اتنی زبردست جگہ ہے یہ, ٹھیک ہے؟
1: Yes, we have, I mean, that's what I do. Sometimes when you feel like, I feel a little down for something or whatever, honestly, I have no reason to be down. You just count your blessings and when you start counting that, it's, you feel like Allah subhanahu wa ta'ala has given you everything. I mean, what more you want? What can... Okay, this is the time now just to give to people.
0: Of course.
1: That's what it is now. Just to give whatever you can.
0: اور جو وہ تھوڑا تھوڑا بھی ہوگا, وہ پیار سے ہوگا, مسکرا کے دینا بھی ہوگا, لوگوں سے بات شیئر کر کے دینا ہوگا, علم جو آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں شیئر کرنا ہوگا, لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوور لک کرنا ہوگا. ایک ہوتی ہے دی آرٹ آف لکنگ, غور کرنا, دھیان دینا. ایک ہوتی ہے دی آرٹ آف اوور لکنگ. کبھی کبھی بہت ساری چیزیں اوور لک کی جاتی ہیں, لیکن جب آپ کوئی سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت اوور لک نہیں کرنا ہے. انسانوں میں جو کچھ ہے اس پہ غور سے ہر چیز کو دی آرٹ آف لکنگ یوز کرنا ہے, اور جو ریئلٹی ہے ہر بندے کی وہ سب کچھ سامنے رکھنا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ سسٹم بناتے ہیں, اس کے بعد جتنے اچھے لوگ ملتے ہیں ان کا دماغ کیسا ہے, دل کیسا ہے, اس کے بعد آپ نے اوور لک کرنا شروع کر. چھوٹی موٹی غلطیاں, پریشانیاں, یہ مسائل, یہ آپ نے اوور لک کرتے رہنے, کیونکہ آپ نے زندگی آگے چلانی ہے, بڑھانی ہے, رشتے آگے چلانے ہیں. مہربان, ہمارے ساتھ ریڈیو آزادی رون دی.
17: نمستے آزاد جی, کیسے ہیں؟
0: بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ نمسکار, السلام علیکم. ٹھیک ہیں؟
17: نمستے. ہاں ٹھیک ہے, بڑھیا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اسی سب اسی ٹاپک کو پھر شروع کیا.
0: کوئی بات, ہم نے آج تو
17: یہی کہانی آپ بولتے بولتے جتنی بھی باتیں آپ بتائے کل سب میں ہم لوگ سنے, اس سے بہت سی چیزیں معلوم ہوئی, کیونکہ اتنا تو ہم کو کبھی معلوم بھی نہیں تھا, جبکہ ہمارے فادر وار میں تھے, فرسٹ وار میں تھے, نہ سیکنڈ. تو جب گولیاں وولیاں لگتی تھی تو وہ دیکھ کر کے, ہم سب سے چھوٹے ہیں اپنی فیملی میں, چھوٹی لڑکی کو کیا پتا سب باتیں, تو بڑا دکھ لگتا تھا. گولی جہاں جہاں پر داغے پڑے ہیں پنکھا کے اور پیٹھی پر, تو ویسے ہی ہے کہ یہ سب تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور لوگ مانیں گے نہیں, سبھی لوگ کرتے رہیں گے, اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں اسٹاپ ہونے کا. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے, لیکن لوگوں کا وچار جو ہے اپنے کو سدھارنا چاہیے, اپنے کو کوشش کرنا چاہیے کہ پریم سے رہ کر کے کتنا فائدہ ہے, تو کوئی سوچتا نہیں ہے. اور آپ اتنا سب بتاتے ہیں تب بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, تو اس کے لیے تو کچھ کہنا ہی نہیں. آزاد جی, آپ پریشان
0: یہاں جو ہے,
17: یہاں پر میں کسی کے منہ سے یہاں پر تو ابھی تک ملی بھی نہیں بہت سے لوگوں کو, لیکن ایون مائی ہسبینڈ بھی کچھ نہیں بتایا, نہ کہے نہ کچھ پوچھے.
0: آپ کے ہسبینڈ نے یہ جان لیا ہوگا نا کہ نہ ملا کر اداس لوگوں سے, حسن تیرا ڈھل نہ جائے کہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھیں جن کے ساتھ آپ کی خواہ مخواہ کی لڑائی ہیں. کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ لڑ رہے ہیں, ایسے کئی بدبخت لوگ ہیں ہمارے ارد گرد, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جو لوگ اپنے آپ سے لڑتے ہیں نا اور خود سے ہارتے رہتے ہیں, وہ دوسرے لوگوں سے لڑتے رہتے ہیں. سو یہ چیزیں بھی سمجھنی ہیں ساتھ ساتھ, کہ بہت ساری ایسی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں, چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کسی کو صاحب سے انہوں نے کہا, اور پچھلے ایک دو دن سے پاکستان میں کافی مسائل ہیں, بڑی تکلیف میں ہیں لوگ, بڑی پریشانی میں, اور یہاں پر بھی جو لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی پوچھ رہے ہیں جی کہ ٹریول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سر میرے خیال سے فی الحال کے لیے آپ لوگوں کو اپنے جو ٹریولز ہیں جو بھی, کیونکہ یہ کام اب بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتایا تھا, جو سوال پوچھا گیا تھا کہ جنگ ہوگی یا نہیں, تو جنگ نہیں ہوگی لیکن لڑائی ہوگی, ٹھیک ہے, لڑائی ہوگی اور لڑائی چلتی رہے گی. تو اسی لیے تھوڑا سا چیزوں کو ہم کوشش کریں گے کہ میں ساتھ ساتھ, اگر آپ کے کچھ کوشچنز ہیں اس بات سے ریلیٹڈ تو بہت سارا, کیونکہ اس وقت میڈیا جو پھیلا رہا ہے, المان الحفیظ, ککھ نہیں پتا ہے میڈیا کو, ایسی فیک نیوز کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور ایسی ایسی باتیں گھر سے گھڑ رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ اگلے دن शर्मिंदा भी नहीं होते? मतलब इतने बड़े बड़े झूठ दोनों तरफ से, कोई हद होती है ना झूठ की? कम से कम कोई ऐसे झूठ बोलो जो माने भी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समझते हैं हम भी, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो हो नहीं सकता, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो चलें एक जब से इंसान है तब से जंग है, ठीक है, और ये जंगें चलती रहेंगी जब तक हम और आप जिंदा हैं, ये जंगें चलती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कम अज़ कम कोई ऐसे झूठ होते हैं जो कि आजकल के को 1940s या 70s थोड़ी चल रही है, ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदा कैमरा, हर बंदा गन लेके फिर रहा है, कैमरा लेके फिर रहा है, वो हर वक्त वो हर चीज़ देख रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। तो उसको आप छुपा कर और झूठ नहीं बोल सकते दोनों तरफ से। करते हैं बात, रेडियो आज़ादी रोंदी। हेलो,
18: अस्सलाम वालेकुम आज़ाद लाला।
0: वालेकुम सलाम, कहाँ रह गई थी?
18: बस थोड़ी बिजी हो गई थी, थोड़ी ट्रैवलिंग आ गई थी।
0: अच्छा, हमारी अगले हफ्ते आएगी, हम आपको फोकस पे शो कराएंगे, और हमने ना, और हम सब लोग, फिर आपको पता है आप नहीं आती तो फिर मुसीबत बन जाती है, लोग पूछते बिल्कुल ऐसे जैसे आप ड्रोन ना आए इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तानी वैसे ही कैमरा लेके ऊपर देखते रहते हैं कि भाई ड्रोन किधर है। वही अब मेरे बारे में पूछ सकते हैं लोग, तो आप तो बड़े लोग हैं।
18: नहीं आप बड़े लोग, मैं तो बहुत मामूली, कौन है?
0: आपको पता है बड़े लोगों की सबसे पहली पहचान ये क्या होती है?
18: क्या?
0: वो खुद को बड़ा नहीं समझते। और आपको पता है छोटे लोगों की सबसे बड़ी क्या निशानी होती है?
18: क्या?
0: वो खुद को बड़ा समझते हैं। बस यहीं से आपको पता है हसीन आदमी की क्या निशानी होती है?
18: नहीं,
0: वो कभी खुद को हसीन नहीं समझता। आपको पता है कोजे और इनसिक्योर आदमी की क्या निशानी होता है? और तारीफें करता रहता है अपनी। तो ये सीधी, वो मैं जो कहता हूँ ना कि अगर एक बंदा कहता है जी मैं बड़ा, मैं क्या, अगर आपको कहने की जरूरत पेश आ रही है, ठीक है, वो मार्गरेट थैचर थी ना, बड़ी अच्छी लाइन की उसकी, अगर लेडी को ये कहने की कोशिश, वो बताना चाह रही है कि मैं लेडी हूँ, तो उसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप लेडी हैं या जेंटलमैन है, खुद पता लग जाएगा।
18: कितनी अजीब बात है, यानी आप जितने लोगों से मिले वो खुद अपनी तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली बता रहे होते हैं, बिकम सो अनोइंग, स्पेशली मुझसे नहीं बर्दाश्त।
0: लेकिन वो नहीं, मजे की बातें होती है, लोगों को कहने दें, लेकिन किस किस्म की तारीफें नॉर्मली आप देखती हैं लोग करते हैं?
18: अच्छा, एक तो मैं इतनी, यानी एक तो अपने करियर की, बस उनसे बेहतर कोई नहीं है, फिर बच्चों की, अगर बच्चों से मैं बहुत परेशान हूँ, उनकी तरह बच्चे।
0: आपको पता है, आपको पता है लोग क्यों करते हैं अपने बच्चों की इतनी तारीफें?
18: क्यों?
0: क्योंकि इन लोगों का प्राइज्ड पोजेशन जो है ना, वो इनके बच्चे हैं जिनकी फ्री विल है, और वो ज्यादातर उनके काबू में नहीं, और ज्यादातर बच्चे आज, मैं कम से कम इस वक्त ना 15 बच्चे हैं मेरे दोस्तों के, जवान बच्चे और हमारे बच्चे सब, ठीक है, और हमने जैसे अपने ये बच्चे, हम जो छोटे दो पाल रहे हैं, 20-22 साल के हो गए हैं, तो वो हर बात मुझसे करते हैं, हर बात का मतलब है हर बात, तो वो करते हैं। और बाकी जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं, मैं मेरे दोस्तों के पेरेंट्स हैं, मैं उनकी काउंसलिंग भी कभी कभी करता रहता हूँ, कोई कुछ ऐसी बातें जो उनके पेरेंट्स नहीं कह सकते वो आगे से बदतमीज़ी करते हैं, मैं बड़े आराम से बड़े सहल पसंदी से कहता हूँ, और उनको यही पता है, मैं उनसे प्यार वगैरह भी करता हूँ। लेकिन इनमें से सारे हमारे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने चरसों से वीड को नहीं एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ सब ने किया हुआ, इन्होंने हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं कई जगहों के, अभी शहरों की बात मैं नहीं कर रहा, शहरों में तो हमारे बच्चे बहुत अमेरिकन और इंग्लैंड के बच्चों से बहुत आगे हैं, ठीक है, हर बुरे काम में, गलत काम में। पेरेंट्स बेचारे, आदमी को ये लगता है कि मैंने नहीं किया तो मेरे बच्चे भी नहीं करते होंगे, या हमें कुछ नहीं पता है बाय द वे अपने बच्चों के बारे में, हम उनको कहीं से एक ट्यूटर रखते हैं, कुरान पढ़ाता है उनको, वो पाकिस्तानी और मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो फिर एक दिन उन्हें कुछ अजीब सा दिल के दौरे पड़ जाते हैं, फिर वही चीज़ें जो कभी भी नहीं कहते थे, फिर उसको कवर करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, फिर वो लोग कम्युनिटी से आउट हो जाते हैं, ये कह के कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, ये सारी ज़िंदगी फिर एक दूसरे को भी शक्ल नहीं दिखा सकते। ये होता है झूठ में रहने का और रियलिस्टिक ना होने का। तो जब आप, आपकी औलाद देखें जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं इस दुनिया में, मुझे इस दुनिया में आए हुए बड़े डेकेड्स हो गए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक अपने माँ बाप की फैमिली की तरफ से सबसे ज़्यादा प्यार देखा, वजह जो भी थी मुझे नहीं पता, ना मैं पता करना चाहता हूँ, मैंने अपनी माँ की तरफ से, जो टोटली डिफरेंट लोग हैं, उनसे की तरफ से सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिला, अपने फादर की तरफ से जो फैमिली है सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिला, میں جب میں نے ایک دو پروفیشن جوائن کی ان میں مجھے بہت پیار ملا, مجھے اسپیشلی جو جونیئرس تھے وہ اور باقی لوگوں سے. میری لوگ بہت عزت کرتے ہیں, بہت قدر کرتے ہیں. میرے نام پہ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے, کروائے, بہت ساری چیزیں کی لوگوں نے, ٹھیک ہے. لیکن میں دنیا میں ایک بندے کا, ایک انسان ایسا تھا جس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میں اس کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے. دو بندے کہہ لیں, خلیق صاحب اس میں شامل کر لیں, دو تین لوگ کر لیں. میں کسی بھی ایسے بندے کا جو اس وقت زندہ ہے میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ وقت پر سٹینڈ لے گا, یا اس کے دماغ کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی کا سٹرکچر یا اس کے اندر رب کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہے. میں کسی کو نہیں جانتا, میں کسی ایسے ہندو کو نہیں جانتا, کسی کو بھی نہیں جانتا جو کہ اصل میں ہندو ہو اور ویداس سیکرڈ وزڈم کی جو بکس ہیں, رگ وید, یجر وید, سام وید, اتھر وید, اگر میں اس کو سامنے بٹھا کے 10 سوال اس سے پوچھوں وہ ایک میں بھی کوالیفائیڈ نہیں. میں کسی بھی ایسے مسلم کو نہیں جانتا کہ جب میں اس سے رب کو, جس رب کو میں کتاب سے پڑھ کے جانتا ہوں, میں 5-10 کوشچن نکالوں اس میں سے وہ ایک کو بھی کوالیفائی کر جائے. پریکٹیکلی کاروائی اور ڈرامے بازی میں نہیں. میں کسی ایک ایسے کرسچن کو نہیں جانتا اپنے, اور میں بہت لوگوں کو ملتا ہوں, بہت تمام ریلیجن کے لوگوں کو میں جانتا ہوں. اگر میں کرسچینٹی کی بیسکس کھول کے ان سے ان سوال کروں, ان کو پتہ ہی نہیں. تو اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ریلیجن کی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی. جب ہم مسلم ہیں ہی نہیں تو پھر لڑائی کس بات کی ہے, جب ہم ہندو ہیں ہی نہیں تو پھر لڑائی کس بات کی ہے, جب ہم کرسچن ہیں ہی نہیں تو لڑائی کس بات کی ہے. بیسکس میں ہی ہمیں ابھی تک نہیں پتا, کتاب کھول کر دیکھی ہی نہیں گئی. اس میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے ریچولز بھی ان تمام عبادات کے خلاف ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں. باقی باتیں تو بہت بات کی ہیں. ہم لوگوں کے بارے میں ہمیں نہ اولاد سے محبت, جب ہمیں محبت کا سر پیر ہی نہیں پتا تو اولاد سے جو بھی ہم محبت کر رہے ہیں وہ سب کی سب غلط ہے. ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے اولاد کو پالنا کیسے ہے, بڑا کیسے کرنا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, کسی بھی انسان کو اس دنیا میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک انسان کو پیدا کر کے بڑا کرنے کے اندر کتنی رسپانسبلٹیز ہیں اور خدا کی کہاں کہاں پکڑ ہو سکتی ہے, آپ یقین کریں کوئی بھی جاگا ہوا مائنڈ فل ہوش میں آیا ہوا بندہ اولاد ہی نہ پیدا کرے. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. لوگ پلانٹس نہیں رکھنے کے نہیں اس قابل کہ وہ پلانٹ رکھ سکیں. میں جب اپنے دوستوں کو, ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں, اور لوگوں کو اپنے ارد گرد بچے پیدا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, میں ڈر جاتا ہوں. ان لوگوں نے بچے پیدا کر لیے تو ذہنی طور پہ ابھی تک بچے ہیں. یہ چھوٹی سی انڈیا پاکستان کے آپس میں جھڑپ ہوئی ہے, اس میں ایسے سے لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں اور ان کے بھی بڑے تھے. انسان ہونے کے ناطے شرم آتی ہے مجھ کو کہ اس دنیا میں, اس زمانے میں بھی ہم اتنے چھوٹی چھوٹی سوچ کے مالک لوگ ہیں اور ہمیں کچھ نہیں پتا. اور جس ریلیجن کے اوپر ہم اتنی باتیں کرتے ہیں, جس کے اندر 150 فرقے ہم نے بنا لیے ہیں, اسکول آف تھاٹس الگ الگ, جس میں ہم اپنے اندر ہی لڑتے رہتے ہیں, اور ہم اتنا نہیں سوچ سکتے کہ جب ہم لوگ گائے کے اوپر, مقدس گائے کے اوپر اتنا لڑتے ہیں لوگ انڈیا میں, اور لوگ پاکستان میں بھی لوگ کیا کیا فضول باتیں بناتے ہیں, کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی گائے کا مقدس ہونا, اور وہی گائے جس میں مقدس ہونے پہ کتنے مسلمانوں کو, کتنے ہندو آپس میں لڑ چکے ہیں اور کتنے نقصانات ہو چکے ہیں. اس میں بیف کے میٹ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر نمبر 1 یا نمبر 2 ان دا ورلڈ انڈیا ہے, اور وہ بزنس مسلم زیادہ نہیں کر رہے, وہ جین بھی کرتے ہیں, وہ ہندو بھی کرتے ہیں, اور یہ نمبر سب کو پتہ, جا کے انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں, لیکن کوئی نہیں جاننا چاہتا. مطلب ہمارا پورے کا پورا سٹرکچر ہی جھوٹ پہ ہے, سب کا سب ہپوکریسی پہ ہے. اور اگر اس کوالٹی, اس حساب سے میں دیکھوں انسان کو, تو یہ انسان جو ہے نا, یقین کریں, صرف چلتا پھرتا 2 ٹانگوں پہ, اس کو 4 پاؤں پہ جیسے کتاب میں رب کہتا ہے ہونا چاہیے تھا, اور جانوروں سے ہی رشتے وشتے کر کے اسی طرح کھانا پینا چاہیے, اس کو اسی طرح اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے, وہی بیسکس اس کی نیڈز ہونی چاہیے. اور جیسے جانور اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے, ویسے ہم لوگ بھی اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں بیسک چیزیں. اور سور کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ صرف پیدا کرتا ہے. اور اسی طرح سانپ اپنے بچے کھا جاتا ہے. تو ہم لوگ, کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو خود کھا جاتے ہیں, ان کے اندر یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ڈال کے انڈین پاکستانی ڈال کے, اور مسلمان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ امہ کا کانسیپٹ ہے. ایک حد کے سرحد کا تو کانسیپٹ ہی نہیں اسلام میں. وہ تو ہر وہ بندہ جو رب کو رب مانتا ہے, جو اپنی ول سبمٹ کرتا ہے, وہ دنیا کے کسی ریلیجن میں کہیں سے بھی اٹھ کے آئے گا. کبھی بھی پیچھے ہزاروں سال پہلے اس کا کوئی بھی ریلیجن تھا, جب اس نے کہہ دیا رب ایک ہے, پیغمبر یہ ہیں اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, بات ہی ختم ہو گئی. کوئی لائنز تو ہیں ہی نہیں, سرحدیں تو ہیں ہی نہیں. تو یہ کہتے ہیں جی کہ میوزک کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, آرٹ کی کوئی سرحد نہیں. ارے بھائی, رب کے بندے کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, رب کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. یہ تو بہت پہلے کا, 1450 سال پہلے کا کانسیپٹ ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا, ہم جب پھر کہتے ہیں جی, یقین کریں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں اس طرح کر کے کہ نا آپ ہمیں انسان نہیں سمجھتے. کئی دفعہ ہم نے محسوس, سچ میں کہتا ہوں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر میں آپ کو انسان نہیں سمجھتا تو میں اتنی جان کیوں مار رہا ہوں 15-20 سالوں سے؟ مجھے تو یہ سب پتہ ہے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو حالات ہیں, جو ایکوریٹ لوگ جن کو اولاد نہیں پیدا کرنی چاہیے ان کے گھر میں اولاد ہے, جو لوگ انسان ہونے کو بڑی صرف کھڑے ہونے کو, بیٹھنے کو, انگریزی بولنے کو, اردو بولنے کو, ڈگریاں اٹھا لینے کو انسان نہیں کہتے آپ. یہ سب کا سب ہمیں جب سمجھ آئے گی, ہر بندہ کونڈ ہے, ہر بندے. دیکھیں میں نے آج تک اتنے لوگوں سے ڈسکشنز کی ہیں, اتنے لوگوں سے, ہر بندے کا کہیں نہ کہیں جا کے ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں سے اس کے اندر کا مسلم جاگ جاتا ہے, ہندو جاگ جاتا ہے, انڈین جاگ جاتا ہے, پاکستانی جاگ جاتا ہے, فلاں جاگ جاتا ہے. رب کا ایلیمنٹ کبھی نہیں اس کو جاگتا اس کا, کیونکہ رب کے ہم نہ جانتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہم اس سفر کے اندر ہیں. جب تک یہ لائف رب کو نہیں جانیں گے, خود کو نہیں جانیں گے, دنیا کو نہیں جانیں گے, زندگی کو نہیں جانیں گے, ہم کبھی مضبوط رشتے نہیں بنا سکتے. اتنے لوگ عشق کرتے ہیں, میں ڈرامے تھک گیا ہوں, یہ سنی شیعہ کی محبتیں, پھر پوری فیملی سے لڑائی, اور اس کے بعد جب بڑی مشکل سے شادی ہوتی ہے, اور اس کے بعد 2-4 سال کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر کھچا کھچائی, ایک ان کو سنی بنانے پہ تلا ہوا, ایک ان کو شیعہ بنانے پہ تلا ہوا. یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ پیغمبر کا تو کوئی سنی شیعہ چکر نہیں تھا. جب مجھے پتہ چلا سنی شیعہ کیا ہے, میں کہاں پیدا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, میں نے تو یہ کام ہی ختم کر دیا. میں تو نہ سنی لکھتا ہوں, نہ شیعہ لکھتا ہوں, تو نہ میں بتاتا ہوں لوگوں کو, کیونکہ یہ تو چکر ہے ہی نہیں. تو یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. جب آپ کو ایکوریٹی پتہ چلے گا, حضور پاک نماز کیسے پڑھتے تھے, آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کیسے پڑھنی چاہیے. ہم کو ابھی تک کسی نے ریسرچ کی ہے کہ خدا کا بندہ جس کی وجہ سے سارا پیغمبر ہے, ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا, اور ہم اور ہمارے ہزاروں سالوں سے جو بھی یہ ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کرتے ہیں, کیونکہ وہ چلا چلایا ہوا سارا کام ہے. تھوڑی سی کوشش کر لینا, آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, ہم امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی اٹیک ابھی نہیں ہو رہا یہاں پر, بیسک نیڈز ہماری پوری ہیں, تھوڑی سی ریسرچ کر لینا, تھوڑی سی کاموں کو فگر آؤٹ کر لینا. اور آپ کو پتہ ہے یہ والی جو حدیث ہے کہ جو انسان رب کو نہیں مانتا, وہ اگر فگر آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ رب ہے یا نہیں, وہ صرف اس انٹلیکچوئل پرسوٹ میں اپنی زندگی گزار دیتا اور کوشش کرتا رہتا ہے. اس میں وہ مر بھی جاتا ہے تو وہ جنت کا پہلا حقدار ہے. صرف کھوجنے کا اتنا اجر ہے, اتنی ویلیو ہے. یہ دوسروں کو اپنی طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ خود ہی نامکمل انسان ہیں, دوسرے نا کو نامکمل بنا کے آپ ڈائریکشن دکھا کے اگلے کی ڈائریکشن گم ہو جاتی ہے, نہ آپ ساتھ چل سکتے ہیں نہ چلا پاتے ہیں. تو یہ ساری باتوں کی کوئی تک ہی نہیں ہے. جنگیں تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر میں کس دن جنگ کو کھول کے رکھوں, اس جنگ کو, تو آپ کو پتہ چلے یہ جو ابھی چل رہی ہے یہ کہاں شروع ہوئی تھی, یہ کس کے ٹیبل پر شروع ہوئی تھی, یہ کس جگہ پر ہوئی ہوگی, اس وقت جو بلاکس ہیں اس میں کہاں پر آپس میں مل کر کی ہوگی, آج سے 5-10 سال کے بعد جب ڈاکیومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے گا, جو ٹرمپ کے زمانے میں بتا رہا ہوگا, یہی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ یہاں سے یہ دو بندے, یہ دو ملک تھے, انہوں نے ایسا کہا, ہم نے بیچ میں سے ان کو ایسے کہا, اور ہم نے کہا بس اتنا اتنا کر کے پیچھے ہو جاؤ. یہ سارے کا سارا آپ کو ایک دن ڈی کلاسیفائی ہو کے مل جائے گا. یہ پوری جنگ کی ایک حقیقت ایک ٹیبل کے اوپر ختم ہو جاتی ہے, وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے, جیسے ایک فلم ہوتی ہے, फिल्म एक टेबल के ऊपर बनती है सारी की सारी, उसमें टीयर जर्कर्स डाले जाते हैं, इमोशंस कहाँ से आएंगे, कौन से डालेंगे, ये एक लाइन होगी, ये कॉन्फ्लिक्ट है इसका, ये इसका रेजोल्यूशन होती है इसमें, फिर उसके बाद आता है किसको रखेंगे, उन एक्टर्स के नाम के ऊपर फिर पैसे लिए जाते हैं, फिर उसके बाद किसको राइट्स दिए जाते हैं, वो सब मिल मिलाकर फिल्म पहले से पता होती है 100 मिलियन की है, 200 मिलियन की है, 23 मिलियन की है, 50 मिलियन की है, उससे पहले उनको पता होता है कि ये इतने में 23, 40, 50 इसके जितने भी बनने ये सब ऐसे बनेंगे और इससे हमारा ये मकसद है और ये हमने इससे हासिल करना है, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली इसी तरह ये सारी फिल्में हम उसमें सिर्फ पॉन का कैरेक्टर करते हैं, हमारी कोई औकात, कोई समझ, कुछ भी नहीं, ना कोई हमारे लिए कुछ करता है और ना हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, यूज़ ज़रूर हो जाते हैं बिकॉज हम नहीं जानते। और आपको रब का जुमला सुनाऊँ मैं, और तुम्हें सुकून कैसे आए तुम जानते जो नहीं हो, समझिए।
15: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी, दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

रोजे भी रखे हैं मैंने। आपने खुद कुछ करना नहीं है, बस मदद मांगनी है। और ये किस चीज की मुखालफत है? ईया का नस्ताइन की, ईया का नस्ताइन। अच्छा आओ, अगर इसकी तरतीब बदल दी जाती, ईया का नस्ताइन हुआ, ईया का नाबुदू, तो क्या फर्क पड़ना था? थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। असल में पहली बात तो यह है कि हमारी इस जिंदगी का बुनियादी मकसद और जो असल नतीजा था पहली तीन आयात का, वो मदद मांगना नहीं था। उसका नतीजा पहला क्या था? मुझे इस रिश्ते की जो जो मुतालबे हैं ना, वो पूरे करने हैं। तो उस रिश्ते की बुनियाद क्या है? इस्तियाना नहीं है, मदद मांगना नहीं है। उस रिश्ते की बुनियाद क्या है? इबादत। और यही एक बुनियादी फर्क है हमारे मजहब में और बाकी तमाम मजाहब में। ये बात भी समझ लेना, बाकी तमाम मजाहब में असल बुनियाद है खुदा मेरी मदद करेगा, ये सारे खुदा मेरी मदद करेंगे। ये किसी ना किसी तरह हमारी किसी ना किसी किसी मामले में, पैसे के मामले में, फैमिली के मामले में, जंग के मामले में, ये हमारी मदद करेंगे। हम ये फलाने चढ़ावे चढ़ाएंगे, हमारी मदद होगी। हम ये बातें करेंगे, ये पूजा करेंगे, हमारी मदद होगी। मदद मदद मदद मदद और मदद। असल मकसद मजहब का, बाकी तमाम मजाहिब का क्या है? कि कहीं ना कहीं से आसमानी मदद आएगी। ये असल मकसद है। क्यों दुआ कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों जो है चर्च जा रहे हैं? मदद के लिए। और मैं इस बात को गहराई में समझना चाह रहा था कि यह वाकई ऐसा है कि नहीं, क्योंकि इस्लाम इन बाकी मजाहिब से मुख्तलिफ है। इस्लाम ने पहली चीज मदद मांगने को नहीं रखा। इस्लाम ने पहली चीज क्या रखी है? इबादत। ईया का नाम वो तो पहले है। और ये कोई छोटा फर्क नहीं, ये बहुत अजीम फर्क है। इस फर्क को अगर आप गौर करो ना, इस फर्क पे आपको पता चलेगा कि इस्लाम किसी और मजहब की तरह नहीं, किसी और मजहब की तरह नहीं। क्यों? मैं गया था, क्योंकि मैं टेक्सास में रहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क से टेक्सास मूव हुआ। टेक्सास में एक साहब हैं, जोल ऑलस्टीन। जोल ऑलस्टीन बहुत बड़े ईसाइत के जो हैं दाई हैं। उनके चर्च में तकरीबन हर संडे को 50,000 से 1,00,000 लोग अटेंड करते हैं हर संडे को। ह्यूस्टन में होते हैं, मैं डैलस में होता हूँ, 3-3.5 घंटे की ड्राइव है वहाँ से। लेकिन कोई यहाँ अभी से 6-7 साल पहले क्रिसमस ईव पे उनका एक क्रिसमस स्पेशल हो रहा था डैलस में। क्रिसमस स्पेशल, जिस तरह हमारे यहाँ ईद का खुतबा होता है ना, उनका क्रिसमस स्पेशल। अब वो बंदा इतना पॉपुलर कि वो किसी चर्च में जाके कर नहीं सकता, क्योंकि इतने लोग आना चाह रहे हैं। तो उसने बुक किया अमेरिकन एयरलाइंस स्टेडियम, जहाँ पे बास्केटबॉल गेम्स और बड़े बड़े मैचेस वगैरह होते हैं ना, उसने वो पूरा स्टेडियम बुक किया डैलस का। मैंने भी टिकट लिया, मैं भी गया देखने क्या होता है, मैं भी देखूँ क्या करते क्या हैं ये लोग। अब मैं वहाँ गया, 3 घंटे का उसका प्रोग्राम था, और उसने अपनी सास को भी बुलाया हुआ था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी भी उसके साथ थी, भाई भी उसके साथ था, और बड़े मज़े की बातें की उन्होंने। लेकिन पूरी बात का तो वो खुलासा भी आपको नहीं बताऊंगा, एक बात बताऊंगा। वादे क्या कर रहा था? इस साल तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जीसस पूरी कर देगा। क्या चाहिए तुम्हें? वो जो जिस डिवोर्स में तुम फंसे हुए, वो केस इस साल ख़त्म हो जाएगा। वो जो तुम्हें जॉब नहीं मिल रही ना, जो प्रमोशन नहीं मिल रही, वो इस साल तुम्हें मिल जाएगी। और वो एक एक चीज़ को लिस्ट करके ना, इस साल जीसस ने फैसला किया है कि तुम्हारी ये ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। और हज़ारों लोग बैठे हुए, मैं ऊपर ब्लीच सबसे चीप टिकट दिए थे मैंने, वो ऊपर कोने में मेरे इनके जो सारे बैठे ना, वो कह रहे हैं यस सर, यप यस। वो क्या सेल कर रहा है उन लोगों को कि तुम्हारी सारी दुआएं क्या होंगी? पूरी हो जाएंगे, सारी ख्वाहिशें सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। एक दफा उसने 3 घंटे में एक दफा इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस खुदा की, जिस खुदा को हम मानते हैं, उसकी इबादत। ना ना ना ना ना, वो तो ठीक है, बस खुदा से मांगो मांगो और मांगो, और वो देगा और वो देगा और वो देगा। अब ठीक है, अल्लाह ताला से मांगना हमारे दीन में, अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला से मुतालबा करना हमारे दीन का हिस्सा है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो ईया का नस्ताइन के तहत है या ईया का नाबुदू के तहत है? ईया का नाबुदू के तहत है या

0: आप पहला पहले अपना काम करो, और इया का नस्ताइन में भी दो हिस्से हैं, मैंने दो हिस्से समझाए थे ना। पहला हिस्सा क्या था? अपनी कोशिश और फिर, और ये जो कोशिश और ये जो आप मुतालबा कर रहे हो वो इबादत के तहत है, यानी मैं अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अब मेरी ज़िंदगी के मकसद और उसके जो गोल्स हैं, जो मेरे अहदाफ हैं, जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं अल्लाह ताला का अब्द बनना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, अब उन गोल्स पे भी असर पड़ा। जिन चीज़ों के पीछे मैं पहले भाग रहा था इय्याका नअबुदु से पहले, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, अब उन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा, किसी और चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ। अब उस चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ तो मुझे मदद की ज़रूरत है, अब मैं अल्लाह ताला से मदद मांगूंगा। तो मेरी दुआओं की असल नेचर ही बदल गई पूरी तरह से। और अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं मुसलमान, कुरान से इतने दूर कि अब हमने अपना अल्लाह ताला से जो रिश्ता बनाया हुआ ना इस वक्त अक्सरियत ने हमारी, उसमें और जो ईसाई ने जीसस के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, जो हिंदू ने अपने मंदिर में रिश्ता बनाया हुआ है अपने खुदाओं से, उसमें तकरीबन कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि हम बस अब एक ख्वाहिशात का मज़हब है। अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा, मेरी मुश्किलें आसान नहीं कर रहा, मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ रही हूँ, मैं तो उम्रा भी किया था, मैं तो फ़लाने रोज़े नफली रोज़े भी रखे थे, मैं तो सदका भी दिया था, फिर भी कोई बात नहीं मान रहा। इस सारे में क्या है, असल बुनियाद क्या हो गई है? किसी ना किसी तरह मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। फातिहा का मकसद ख्वाहिशात नहीं है, फातिहा का मकसद है मकसद, इंसान की ज़िंदगी में मकसद डालना। एक दफ़ा मकसद आ जाए ना तो अब वो मदद किस चीज़ में मांगेगा, या अल्लाह जिस मकसद के लिए मुझे बनाया है ना उस मकसद को पूरा करने में भी मुझे आपकी क्या चाहिए, मदद चाहिए। इय्याका नअबुदु असल में मकसद है, और इय्याका नस्ताईन उस मकसद को पूरा करने के लिए हम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं। इसकी एक और मिसाल, आखिरी मिसाल आप समझ लें ताकि ये बात जहन में बैठ जाए। आप सफ़र पे जा रहे हो, आप चलो आप फ़र्ज़ करो आप पिंडी से आप लाहौर जा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी पे सफ़र पे निकले हो, रोड पे निकले हो, रास्ते में आपको गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया, आपको रुकना पड़ेगा, है कि नहीं? आप रुकोगे, मदद के लिए रुकोगे ना, गाड़ी को मदद की ज़रूरत है, आपको भूख लगी है, आप खाने के लिए रुकोगे, आपके जिस्म को मदद की ज़रूरत है ना? रुकोगे हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए क्यों? क्योंकि वो आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद क्या था? लाहौर। तो आपको यहाँ रुक के थोड़ी मदद लेके फिर आगे चलना है, और रुकने का भी एक मकसद था ताकि बाकी सफ़र पूरा हो सके। समझ में आ रही है बात? हमने क्या किया है, वो जो जो स्टॉप्स आते हैं ना जिंदगी में वही मकसद बन गए हैं। या अल्लाह और खिला दे, और खिला दे, और पेट्रोल डाल दे, और पेट्रोल डाल दे। किस लिए डाल दूँ? बस पेट्रोल बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उधर ही अब आपका मकसद क्या बन गया? इस पेट्रोल स्टेशन से अगले पेट्रोल स्टेशन तक जाना बस। और कभी कभी कहना है वो पुराना पेट्रोल स्टेशन अच्छा था, वहीं वापस चलते हैं, या अल्लाह वहां दोबारा वापस पहुंचा से। ये मिसाल आप समझ लें कि हम एक सफर पर हैं, और उस सफर पर हमने अल्लाह ताला से मदद मांगी है, क्योंकि जब आप लंबे सफर पर जा रहे हो तो आप थक जाते हो, तो फिर आपको मदद की जरूरत होती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। इसमें एक और बड़ी प्यारी बात यह है कि इय्याका नअबुदु असल में हमारी कमिटमेंट है अल्लाह ताला के साथ, और इय्याका नस्ताईन में हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। अल्लाह का मुतालबा किस में पूरा हो रहा है? इय्याका नअबुदु। और हमारा मुतालबा किस में पूरा हो रहा है? इय्याका नस्ताईन। जो चीज़ अल्लाह के लिए है वो पहले होनी चाहिए, जो हमारे लिए है वो बाद में होनी चाहिए। तो इय्याका नअबुदु पहले, इय्याका नस्ताईन बाद में। इय्याका नअबुदु, इय्याका नस्ताईन। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत बारीक सी चीज़ इस आयत में यह है कि इय्याका दो दफ़ा जिक्र करना लाजमी नहीं था। इय्याका नअबुदु व नस्ताईनु अरबी के कवायद के अतबार से सही है। अगर आप कहो इय्याका नअबुदु व नस्ताईनु, हम सर तेरी ही इबादत करते हैं और मदद मांगते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुरान ने अपनी हिकमत में इय्याका का दो दफ़ा जिक्र किया, इसको इतनाब कहते हैं। इतनाब कहते हैं अरबी में जो बात बार बार नहीं की कहने की ज़रूरत थी उसको दो दफ़ा कहना, या दो से ज़्यादा मरतबा भी कहना, इतनाब स्टाइल को इतनाब कहा जाता है। तो कुरान ने यहाँ पर इतनाब का इस्तेमाल किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। इस इतनाब का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि कुछ मामलात में हमें अल्लाह ताला की इबादत में ही मदद चाहिए होती है, और कुछ मामलात ज़ाती भी होते हैं जिसका इबादत से ताल्लुक़ नहीं होता। कभी कब होता भी है, बुनियादी तौर पर इबादत से ताल्लुक़ होता है, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी में सिचुएशंस आती हैं जिनका इबादत से ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी अल्लाह की मदद चाहिए। तो अगर कहा होता ना इय्याका नअबुदु व नस्तईन, तो सिर्फ एक ही तरह के मामले में हम अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं। किस तरह के मामलात में? इबादत से मुतालिक मामलात में, सेहत से मुतालिक मामलात में नहीं, फैमिली से मुतालिक मामलात में नहीं, पैसों से मुतालिक मामलात में नहीं, अपनी डिप्रेशन के मामलात में नहीं, अपनी एंग्जाइटी के मामलात में नहीं। लेकिन अब एक जोड़ भी बन गया और एक अलहदगी भी हो गई, यानी दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और उन दोनों की गुंजाइश अल्लाह ताला ने हमें दे दी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा,
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बिगिनर YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान।
0: तो जब आप किसी को बड़ी नफरत से हिदायत देने की कोशिश करते हैं, ये लोग तो जहन्नमी है, जहन्नमी, इनको देखो काफिर हैं, ये काफिर, ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने मुशरिक हैं, ये फलाने जिस जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये इहतिना की रूह से सही है कि नहीं?

0: اهدنا الصراط المستقيم. इसको समझने के लिए इसका मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपको ब्रेक दूंगा। इसको समझने के लिए एक मिसाल समझने, मैंने कल आपको एक अजीब सी मिसाल दी थी। फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आके कहें आज के बाद नुमान तुम मेरे गुलाम हो, मैं कहूँ चलो ठीक है सही है। अब फ़र्ज़ करें आपने कहा मैं गुलाम हूँ, मैंने कबूल कर लिया और फिर मैं बैठा हूँ आपके साथ सोफे पे आधा घंटा, 20 मिनट 40 मिनट, आपने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं कहूँ अच्छा गुलाम तो मैं हूँ, कुछ करवाना है? अगर मेरा जो मालिक है वो कुछ कहेगा नहीं कि जाओ घास काटो, घर साफ करो, खाना पकाओ, जब तक वो कुछ कहेगा नहीं तो वो मालिक कैसा हुआ? क्योंकि अगर मालिक कुछ कहे नहीं तो मैंने क्या करना है? अपनी मर्जी, उसके कहे बगैर उसके मालिक होने का, उसके रब होने का नाता पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक रिश्ता है ना, मालिक और रब और अब्द। रब जब तक हिदायत नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, अहकाम नहीं देगा, कहेगा ये करो ये ना करो, ये इस वक्त करो ये ऐसे करो, इस चीज़ को सुनो, इस चीज़ पे गौर करो, जब तक वो ये नहीं देगा तो फिर रब सिर्फ कहने का हो गया। मैंने मान तो लिया कि वो रब है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा। ये भी होता है, मैंने ये चीज़ वहाँ US में तो बहुत कम देखी, मुसलमान कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखी। हमारे यहाँ टाइटल्स बहुत मिलते हैं जिनसे कुछ होता नहीं है। तो मुझे फलाने प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया या एडवाइज़र बना दिया, या एक मैं बेना के साथ एक यूनिवर्सिटी थी, मुल्क का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, हमारी यूनिवर्सिटी का बेना इंस्टीट्यूट के साथ बहुत तावन है। 10 साल पहले की बात है, कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन एक सर्टिफिकेट है, वो तावन है। यानी कहने को तो एक रिश्ता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ है कि नहीं, नथिंग, कहने की बात है बस। और लेकिन वो जो हाथ शेक करते हुए फोटो लेना बहुत ज़रूरी है, वाह बड़े मज़े के हैंड शेक्स होते हैं यहाँ, आप सिर्फ हाथ नहीं मिलाते हैं, कहते हैं फिर पकड़ते हैं फिर ऐसे देखते हैं, क्योंकि उसका असल मकसद हाथ मिलाना नहीं होता, हाथ मिलाने का रिकॉर्ड होना होता है, उसको फ्रेम करना होता है। अल्लाह ताला ने अगर अपने आप को रब कहा है, रब कहा है, तो रब होने का तकाजा यह है कि वो अपने बंदे को बताए मेरा बंदा होने के नाते तुम क्या करोगे। अगर वो बताएगा नहीं तो रब किस बात का हुआ फिर वो? तो क्योंकि हमने अभी खुद ही कहा ना कि हम अब बनने को तैयार हैं, इया का नाबुदो, हम आपकी मदद मांग रहे हैं, तो हमने पहली मदद क्या मांगी? ए दिना, हमें हिदायत दें, हमें बताएं हम क्या करें। अच्छा अब तो हो गए लेकिन हमें पता नहीं करना क्या है, कैसे करना है। और इस एहतिरा में दो पहलू आ गए, दोनों इया का नाबुदू से भी मुतालिक है, इया का नस्ताइन से भी मुतालिक है एहतिरा, यानी हमें हिदायत दें कि आपकी मदद कैसे आएगी दूसरे दर्जे में, और पहली बात हमें हिदायत दें हम इबादत कैसे करें, आपको खुश कैसे करें। पुराने मजाहब में पता क्या होता था, जो बिगड़ी हुई शक्ल है इस्लाम की, इस्लाम जब अंबिया लेकर आए और फिर आने वाली नस्लें उसको भूल गईं, खुदा को अगर खुश करना है ना तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं खुश हो जाता, कोई ना कोई बकरी ज़बह करके उसका खून डालना पड़ेगा, कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, कोई ख़ास खाना बना के उसके सामने रखना पड़ेगा। आप देखेंगे मंदिरों में और जगहों पर क्या होता है, आप वो खाना लेकर आते हैं और वो सामने पेश करते हैं, ये जी मैंने आपके लिए चॉकलेट केक बनाया है, ये मैंने रखा हुआ है, अब बस आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दें। जब तक उस खुदा को कुछ दोगे नहीं वो आपको कुछ नहीं देगा। और ये तमाम मज़ाहिब में, यहाँ तक कि कुछ मज़ाहिब में तो इतना एक्सट्रीम था कि जंग होने वाली है और हम जीत नहीं सकते जब तक फलानी जो जो देवी है उसकी मदद नहीं आएगी, उस देवी को खून की एक कुर्बानी चाहिए, तो हमारी जो सबसे यंग लड़की है उसको कुर्बान करके पहाड़ी से फेंक दो फिर उस देवी की मदद आएगी। अपनी बच्चियों को वो ज़बह करते थे उस खुदा की मदद लेने के लिए, क्यों? क्योंकि उनका खुदा के साथ रिश्ता और खुदाओं के साथ और देवियों और देवताओं के साथ जो रिश्ता था ना, वो था एक तिजारती रिश्ता,
1: ट्रांजैक्शनल, हम कुछ देंगे फिर वो कुछ हमें देगा।
0: फातिहा में शुरू से ही अल्लाह ताला ने हमसे कुछ मांगा, पहले अपनी नेमतें बताएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कुछ किया कि उसने किया है,
0: उसने हम की मुस्तहिक चीज़ें की हैं खुद।
1: फिर उसके बाद अर रहमान अर रहीम, हमने कुछ किया है भी कि वही कर रहा है,
0: वही कर रहा है। यानी शुरू से ही हमारे किए बगैर हमें दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब हमें कुछ शर्म आई, हमने कहा मेरे रब हम क्या करें,
1: आपने इतना कुछ कर दिया, अब हमसे भी तो कुछ करवा लें,
0: हमारे नाम क्या खिदमत है। और वो क्या है, एहदिना
1: एहदिना, हमें कुछ तो कह दें। आप मुझे ये बताएं, हम जितना भी कर दें, अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं उसका मुकाबला किया जा सकता है
0: ना? तो ये एहदिना में भी जो अल्लाह ताला हम जो से जो हम हिदायत मांग रहे हैं ना, वो असल में अल्लाह ताला को पहचानने के बाद कम अज़ कम हमारे रब हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हम आपका कभी हक तो अदा कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ है जो हम अगर पूरी कर दें तो आप हमसे राज़ी हो जाएं, आप हमारी इबादत कबूल कर लें, तो वो बता दें वो क्या होगी। यह है एहतिना। और फिर एहतिना के अंदर अगर कहा होता मुझे हिदायत दे दें, एहतिनी एहतिनी अस्सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन हमने एहतिनी नहीं कहा, क्या कहा है,
1: एहदिना।
0: अच्छा, शुरू में जब हम्द की थी ना, जब मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ दिल से, तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा होता, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ,
1: अपने बारे में।
0: जब मैं अल्लाह के बारे में कहता हूँ अर रहमान अर रहीम, अल्लाह की जो मोहब्बत है उसका मेरे लिए ख्याल है, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ, अपने बारे में, इनफरादी बात है। मालिक यौमिद्दीन, मुझे आपकी फिक्र होती है, अपनी फिक्र होती है, अपनी फिक्र होती है। अभी तक जो सारी बात हो रही थी वो फर्द की थी, मेरी थी, तो यहां तक जो बात पहुंची तो मुझे कहना क्या चाहिए था, तवक्को क्या थी, मुझे हिदायत दें। अभी तो बात, हर बात का इशारा मेरी तरफ वापस जा रहा है, मैं रब, मैं अब्द हूं। लेकिन इबादत की और हिदायत की जो तलब हमने की है वो इकट्ठे की है, इसमें भी एक बात की तरफ इशारा है कि ये हिदायत अकेला इंसान नहीं कर सकता, अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। हमें इकट्ठे हिदायत दें। और इसमें एक खुद गर्जी से भी निकाल दिया हमें, या अल्लाह मुझे हिदायत दे बाकी भाड़ में जाए, बस मैं और तू। नहीं नहीं नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की फ़िक्र करना भी सिखाई। अगर मेरे रब में इतनी रहमत है, इतनी मोहब्बत है, इतना ख्याल है, और उसने मुझे बनाया है, तो मेरे अंदर भी उसकी कुछ झलक तो आएगी ना, कि मुझे भी किसी और का ख्याल है, मुझे किसी और से भी मोहब्बत है। और जो चीज़ मैं अपने लिए इतनी बुरी तरह चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, मैं सबके लिए चाहता हूँ। यह आखिरी जो जो तामुल है, इसके बाद मैं आपको ब्रेक देने लगा हूँ, ज़रा सोचना इसके बारे में। अगर इसका मफहूम आप वाकई समझे हैं, मुझे हिदायत देनी कहा, हमें हिदायत दें कहा है, अगर इसको वाकई हम समझते हैं, इसका मतलब पता है क्या है, मुझे औरों के लिए क्या चीज़ चाहिए, जो हिदायत मुझे अपने लिए चाहिए वही हिदायत मुझे उसके लिए चाहिए। और जिस नरमी से और जिस नरम दिल से मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांगता हूँ ना, उसी नरमी से मुझे किसी और के लिए भी हिदायत चाहिए। तो जब आप किसी को बड़ी नफ़रत से हिदायत देने की कोशिश करते हैं, जब आप ये लोग तो जहन्नमी है जहन्नमी, इनको देखो काफिर हैं ये काफिर, ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने मुशरिक हैं, ये फलाने उधर, जिस जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये एहतिना की रूह से सही है कि नहीं? अगर वाकई एहतिना समझे हो और कोई बहुत ही गलत रास्ते पर है, बहुत ही गलत रास्ते पर है, इस फातिहा के पढ़ने में आपने उसके खिलाफ दुआ की है कि उसके लिए दुआ की है, उसके लिए दुआ की है, उसके लिए, और जिस जज्बे से अपने लिए दुआ की है उसी जज्बे से उसके लिए दुआ की है। ये नहीं कहा अल्लाह मुझे हिदायत दे और उनको भी दे दे फिर भी हाँ चले उनको भी थोड़ी बहुत। एक दिन हम सबको इकट्ठे एक जैसे जो मैं अपने लिए चाह रहा हूं और जिस तरीके से अपने लिए चाह रहा हूं उसी तरीके से किसी और के लिए भी चाह रहा हूं।
1: हमारा आजकल क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और ऐसा दौर इंसानियत पे गुजर रहा है कि हम एक दूसरे के अफकार को, एक दूसरे की बातों को अब दुनिया के हर कोने में इस तरह सुन सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं सुन सकते थे। इसी तरह इस्लाम और इस्लाम से मुतालिक जो बातचीत हो रही है वो अब जिस लेवल पर हो रही है और जितनी ज़्यादा हो रही है पहले कभी नहीं हो सकती थी, राइट? हर तरह के लोग हर तरह की बात इस्लाम के बारे में भी कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन एक जायज़ा मेरा क्या है कि अक्सरियत बात जो इस्लाम के बारे में हम करते हैं ना, वो हम किसी और की तनकीद करते हैं। अक्सरियत ये गलत इसलिए है, फलाना गलत इसलिए है, इसकी बात इसलिए नहीं सुनो, इसको इस तरह गलत साबित करूँगा, इसकी इस तरह धज्जियाँ उड़ाऊँगा। और फिर वो जवाब में क्या कहता है, अच्छा मैं गलत हूँ, मेरी वीडियो देखना कि तुम कितने गलत हो। और एक दूसरे की गलतियाँ, और ये दोनों फिर गलत वीडियो, एक दूसरे की गलतियाँ वीडियो रिलीज़ करने के बाद फिर नमाज का टाइम होता है और दोनों इकट्ठे खड़े होकर कहते हैं अपने अपने घरों में इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हयात का मजाक नहीं बना लिया हमने? और ये कोई बहुत गहरी तालीम है जो बहुत कुरान पढ़ने के बाद कई सालों बाद जाके समझ में आएगी, तो पहले सफ़े पर है यार। ये तो जब आपने इस्लाम कबूल किया था तब से आपके जहन में ये बात आनी चाहिए थी कि मुझे बाकी इंसानियत की फिक्र है, मुझे उनको गलत साबित नहीं करना, मुझे उनके लिए भलाई चाहिए। और जो रहमत मुझे अल्लाह दे रहा है उसी रहमत का तकाजा है कि मैं लोगों के साथ भी रहम से, मोहब्बत से, इखलास से, खलूस से बात करूं। और अगर बिना वाकई किसी के साथ इख्तिलाफ है मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गुमराही में पड़ गया है, मुझे फिक्र है क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ उसके बारे में? अगर आपको किसी की फिक्र हो, अपने कज़न की फिक्र हो कि वो किसी गलत रास्ते पे चढ़ गया है, तो आप उसकी वीडियो बनाओगे कज़न की? मेरा कज़न जो है वो, मुझे लग रहा था कि वो शराब पीना शुरू कर दी उसने, तो मुझे उसकी बहुत फिक्र है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि वो हिदायत के रास्ते पर आ जाएगा। अपलोड। या आपने उसके साथ मोहब्बत की है या उसके साथ नफरत की है, ये नफरत नहीं है। अगर वाकई उसकी फिक्र है तो क्या करते, उसके घर जाते, उसे गले लगाते, उसे साथ बिठाते, उसे कहते मेरे भाई हो तुम, क्या कर रहे हो, नहीं करो ऐसे, कब शुरू हुआ ये, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ मैं तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाता हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा, ये तुम्हारे मेरे दरमियान है। और ये किस चीज़ का तकाजा है, मोहब्बत का। एक तरफ तो खुतबा हो रहा है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ अपने भाई के ऊपर वीडियो बन रही है। भाई से बात कभी की है? नहीं नहीं नहीं। और फिर दूसरी बात, बात भी करोगे ना, अगर कोई कहे कि नहीं मैं उससे खुद बात करूँगा, उन लोग कॉमेंट्स में भी लिखते हैं आप उससे खुद ही बात करें, हाँ मैं करूँगा बात उससे, वो बात करो, वो बात को रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के करो। दिस इज एहदिना नाउ, ये नया एहदिना है। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन एहदिना। अगर मैं तो कहता हूँ अगर मुसलमान फातिहा पे गौर कर लेना तो उम्मत की शक्ल बदल जाए, हमारा पूरा डिस्कोर्स बदल जाए, किस किस्म का हम मवाद तैयार करते हैं, कैसे हम बात करते हैं, हमारा उसलूब क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या, सारा का सारा बदल जाए। और अभी हम इस आयत में दाखिल नहीं हुए, सिर्फ इसका मैं ताल्लुक दिखाना चाह रहा था पिछली बातों से। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हमने अल्लाह से दावा किया ना कि हम इबादत करने को तैयार हैं और हम मदद चाह रहे हैं, तो कैसी मदद हो और कैसी इबादत करनी हो उसके लिए अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठे अपनी हिदायत दें। ओके, दो सवाल थे, इसमें से एक मुझे याद आ रहा है इबादत के बारे में, इबादत के कॉन्सेप्ट के बारे में, इयाका नअबुदु। क्योंकि इस आप सबको इल्म होगा कि जो हिदायत हमने मांगी है इस सूरत में उसका जवाब बाकी कुरान है, यानी उसके जवाब में अल्लाह ने हमें ये पूरी किताब दी है, तो इसका मतलब ये होगा कि इबादत, इसकी तमाम तालीमात को इबादत ही समझा जाएगा। और इसकी तालीमात में नमाज शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, زکوٰۃ شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں، روزہ شامل ہے، حج شامل ہے، لیکن اس کی تعلیمات میں تدبر بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں سوچنا بھی شامل ہے، سیکھنا بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں غور کرنا، تاریخ کے بارے میں سیکھنا، اس کی تعلیمات میں جذبات کو سمجھنا، مختلف جذبات کو سمجھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل سے گزرے اس پر غور کرنا، یعنی عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے، ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں۔ میرا سوال یہ، آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے، اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے، سوچنے کا مطالبہ ہے، دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے، مختلف قسم کے مطالبے ہیں۔ ہر مطالبہ عمل نہیں ہے، عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا، لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں، اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا، فلسفی اور ہو گئے اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے۔ قرآن نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا، اور یہی اصل عبادت ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ اور یہ کانسیپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا آپ اس پہ غور کرو گے آپ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا، جتنا اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے عبادت کے کانسیپٹ میں کمزوری اور کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے عبادت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ کمائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے عبادت کر رہا ہے، رائٹ؟ جب سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی تیاری کر رہے تھے وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے۔ جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا، اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ خیر، تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات تھی مضارع کے بارے میں کہ ایاک نعبد، میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا، ہم نے آپ کی عبادت کی، ہم نے آپ کی مدد مانگی، یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا، لیکن مضارع استعمال کیا ہے۔ مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا، یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے، تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہے۔ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے، ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں مانگتے رہیں گے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہوگا، مانگتے رہیں گے۔ تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ابھی کی اور فیوچر کی، مستقبل کی، ان الفاظ کے ذریعے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اوکے، دوسرا ایک سوال آیا تھا العالمین کے بارے میں پہلے، کہ العالمین میں تفسیر میں اکثر و بیشتر یہی کہا جا رہا ہے کہ العالمین میں نباتات، جمادات، پرندے، جانور، جنات، تمام عالم، تمام دنیائیں، تمام جہانوں کا مالک نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ، جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی۔ انگلش میں سمجھ لیں، پرائمری میننگز، سیکنڈری میننگز، پہلے درجے کے معنی، دوسرے درجے کے معنی، اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹر فاضل صالح حسام رائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں، انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے، عربی میں ہی کام کیا ہے، عراقی ہیں وہ، سامر راہ سے ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے سٹرکچر کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکسٹ کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے، اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے اس صورت میں، جو जो अवाइल मायने हैं, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है कि अवाइल मायने कौन से हैं। इनकार नहीं किया जा रहा एक का या दूसरे का, लेकिन पहले दर्जे के मायने किसके हैं, नंबर वन पे किसको रखना है, नंबर टू पे किसको रखना है।
0: मेरे नज़दीक नंबर वन पे ज़वील उकूल,
1: ईना से ज़वील उकूल निकलते हैं, यानी फरिश्ते, जिन, इंसान, रूहें, ये तमाम आलमीन में शामिल होंगी, इस दुनिया में या आखिरी में, अगली दुनिया में। लेकिन क्योंकि इस सूरत का असल मकसद इंसानियत से खिताब है और इसका असल मकसद हिदायत है हमारे लिए, इसलिए पहली प्रेफरेंस मीनिंग की उस मानी को देनी चाहिए जो इसके साथ फिट करती है। तो सियाक से पता चलता है कि कौन से मायने को पहले दर्जे पे रखना चाहिए। ठीक है, खैर।
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
1: जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी ज़रूरत है। आपके बच्चे आपके पास आके कहते हैं मुझे 500 चाहिए, मुझे 1000 रुपये चाहिए। जिस तरीके से मांग रहा है, मांगने देने का दिल नहीं जाता। फिर आप बच्चे को तमीज़ सिखाते हैं कि पूछा का तमीज़ से पूछा जाता है, अदब से पूछा जाता है, और फिर आप नमाज पे खड़े हो कहते हैं अल्लाह अकबर। उसको तो तमीज़ सिखा दी कि मुझसे कैसे पूछते हैं, और जिस तरीके से हम अल्लाह से पूछते हैं। एक दिन सुना तो उस तक ही।